0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज ना लेट्स स्टार्ट दिस इंटायर कॉन्वर्सेशन अराउंड लव एंड रोमांस विद अ स्टोरी. और ये एक असली स्टोरी है. ये स्टोरी बहुत साल पुरानी है जिसमें दो किरदार हैं. एक अमृता प्रीतम हु इज दिस वेरी फेमस राइटर ऑफ हर टाइम्स और दूसरे उनके देन प्रेमी फिरोज की. फिरोज अमृता से उम्र में बहुत छोटे थे और वो एक पेंटर हुआ करते थे. अब उन्हें अमृता से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वो चाहते थे कि अमृता उनसे शादी कर ले. तो एक बंद कमरे में फिरोज आस्क्स अमृता कि अमृता क्या तुम मुझसे शादी करोगी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊँ. तो अमृता उन्हें देखकर कहती हैं कि फिरोज एक काम क्यों नहीं करते, तुम पहले पूरी दुनिया हो आओ. जब तुम पूरी दुनिया घूम कर आओगे और तुम्हें तब भी लगेगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तब मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी. तो फिरोज अपनी चेयर से उठते हैं और अमृता के आसपास एक चक्कर लगा लेते हैं और अमृता के सामने अपने घुटनों पर बैठकर कहते हैं कि अमृता मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और मुझे अभी भी लगता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है. और अमृता हंसकर कहने लगी कि अगर ऐसी बात है और मैं तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ तो ठीक.

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस लगाया नहीं।
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
1: नहीं दीदी,
2: मैं कल को
1: फोटो खींचे हुए।
2: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए।
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Just to get revenge on your boyfriend, aapne uski bahut hi zyada intimate photographs leak kar di and they became viral.
3: The secret box.
2: अगर ऐसे ही आपकी जिंदगी में अमेजिंग कन्फेशंस AF हैं, then why don't you hit me up? Because मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल खान मेरी जान. यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय,
2: हाउ आर यू?
4: आई एम गुड. व्हाट ये कि आई एम वर्किंग फॉर सम हियर इन कंपनी एंड देयर इज अ लाइक यू नो business is not going very good, and I was little there are some disturbed city, huh. And there was a party from huh. my office side, huh. So I don't wanted to go, but उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया कि नहीं नहीं यू कम ट्राई वेंट आउट. ठीक है, वहाँ पे गए हम लोग. बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके मेरे पास नंबर्स नहीं थे. व्हाइल डांसिंग आई जस्ट सॉ वन गाय, ही वाज सिटिंग एट द यू नो बार काउंटर. ही वाज हैविंग द ड्रिंक एंड तो उस समय दो मतलब एक डेढ़ घंटे से देख रही थी. वो बड़ा सीधा सा चुपचाप बैठ के अपना दारू पिए जा रहा था. ही वाज एंजॉयिंग एंड वो हम लोग की तरफ देख भी नहीं रहा था. वी वर एंजॉयिंग योर डांसिंग एंड एवरीथिंग. तो हुआ क्या, मैं उसके पास गई. मैंने उससे पूछा कि यू डोंट डांस? He said, no, I don't dance. Huh. Okay. Huh. So, I said, you are new in the city? Huh. So, he said, yes. Huh. I'm from somewhere. He told me the city name. Huh. And I said, okay. I said, hey, would you mind to share your number?
2: Huh. Wow.
4: So, he shared it. Yeah. Huh. He shared his number. But huh. I swear, I like that guy. Huh. And he was very seedha saada type ka. Huh. So, when I picked up his number, lady, I thought of calling him huh. for a business proposal huh. tomorrow morning. Huh. ऐसे करके मैंने उसका नंबर लिया एंड ही आल्सो गेव मी. एंड फिर उसके बाद आई वेंट आउट, मैं घर आ गई. तो मैंने क्या किया, जो वहाँ पे हम लोगों की पार्टी हो रही थी उसमें कुछ लड़कियां भी थी जिन्होंने पिक्चर्स ली थी. तो मुझे उनको कॉल करके या मैसेज करके वो पिक्चर्स के लिए आई कॉल्ड अप. सो व्हाट हैपेंड इज कि आई कॉल्ड दैट गाय. ठीक है, उसके पास मिस कॉल चली गई, मतलब कॉल चली गई प्रॉपर. एंड जब उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने उसके हाई लिख के भेजा. तो मैंने सोचा कि आई एम जस्ट कॉलिंग माई ऑफिस गर्ल टू टेक द पिक्चर. उधर से कॉल आया, वो उसकी वाइफ थी. कैन यू इमेजिन?
2: आर यू सीरियस?
4: नो, शी टुक माई फुल नेम एंड शी सेड टू हिम, यू वांट टू टॉक? आई सेड इट हु इज दिस? नो नो मैडम, यू जस्ट सेड हाय राइट एंड इन द नाइट गर्ल यू फॉर अ ब्लॉक यू आर कॉलिंग माई हस्बैंड. आई नो यू टाइप ऑफ गर्ल, यू आर गोइंग फॉर द मनी दिस एंड दैट. सीरियसली, मुझे इतनी गालियां दी, तू डॉग हुआ भी बंदी में. No, so worry, listen to me.
2: Bechari.
4: No, man. And the guy, he said, hi. Huh. Yes, we just met, no? Huh. We shared the number, na? Huh. I said, yes, but meri galti kya hai? Now you don't know me. You will get a call in every half an hour. You don't know me, madam. And I'm coming to your office. I'll tell this girl took my husband number and she's going to get money. And मैं उसको बोल रही हूँ, मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई वाज नॉट कॉलिंग हिम. एंड माय हस्बैंड केम एंड सेड, रात के 12:30 तुम किससे बात कर रही हो, तुम इतनी ज्यादा हाई हो. आई सेड, एक तो मैंने उस बंदी को बोला, डू यू वांट टू स्पीक टू माय हस्बैंड? अच्छा, योर हस्बैंड इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस? ग्रेट, आई एम कमिंग टू योर ऑफिस टुमारो मॉर्निंग एंड देन आई टेल यू हु आई एम. मैंने घर से फोन रखा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मेरी पूरी की पूरी धारा उतर गई. फिर उसके बाद क्या हुआ, माई हस्बैंड सेड, चलो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ. आई सेड, नो, I'll go myself. He said, no, I drop you. On the way, I said, no, I'm going alone. And personally, Roshi, मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि अब कोई मंडी मेरे ऑफिस आएगी और मेरी वॉच लगा देगी. और मेरी लाइफ में पहली बार किसी से नंबर लिया था. एंड आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ, और मैं ऑफिस आके भी परेशान थी. तो मैंने सोचा ना, लेट मी कॉल हर. आई कॉल्ड हिम, आई सेड, सर, वेरी गुड आफ्टरनून एंड आई एम रियली सॉरी. ही सेड, लिसन लिसन लिसन मैडम. मैंने कहा, पहले तो उसने बोला, नहीं नहीं, माई वाइफ सॉ योर कॉल एंड मैसेज एंड ही गॉट crazy and this and that. He told me, I said, sir, please give me the number. I'm going to meet her and I'll say sorry. My intention was not bad. So he said it, okay, take the number. Then he told me the address. She just stayed next to my house.
2: Oh, Jesus. That is so crazy. Ye to bahut amazing story hai.
4: And she was my senior too.
2: Just for that day, na, I'm going to roshify you. To aap ek gehri saans to le hi lo.
0: You've been roshified.
2: Babe, it was a really, really crazy story. Thank you so much for sharing it with me. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई silly, silly confession है, why don't you hit me up Insta पर या FB पर and we'll get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. प्यार से लोग मुझे अपनी ब्रोशी कहते हैं. नाम की spelling ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot.

0: का स्वागत
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि अगले 40 सेकंड में आपको मुझसे बहुत मोहब्बत होने वाली है. दैट्स बिकॉज आई एम गोना टेल यू अ ग्रेट साइकोलॉजिकल ट्रिक विच विल हेल्प यू स्कोर बेटर विद द गाय या द गर्ल जिससे आप मोहब्बत करते हो और यू आर क्रशिंग ऑन. और उस ट्रिक को कहते हैं, इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना कॉल्ड द मियर एक्सपोजर इफेक्ट. इसमें होता ये है, अगर आप चाहते हो कि सामने वाले इंसान को आपसे मोहब्बत हो जाए तो मेक श्योर कि आप उसके आस पास एटलीस्ट 2 दिन में एक बार घूमते हुए नजर आ जाओ. सो ये थ्योरी ये कहती है कि जब एक इंसान रोज किसी चीज को रिपीटेडली देखता है तो दैट सेंस ऑफ फेमिलियरिटी ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ लव स्लैश अट्रैक्शन. सो चांसेस हैं कि अगर आप रोज एक इंसान को मिल रहे हैं विदाउट साउंडिंग क्रिंज और कमिंग अक्रॉस इज क्रीपी, उस इंसान को आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स होने लगेंगी और धीरे धीरे वो सॉफ्ट फीलिंग्स कैन टर्न इन टू हार्ड कोर लव. इसे ट्राई करके देखो, यू हैव नथिंग टू लूज एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू. इस साइकोलॉजिकल ट्रिक के लिए यू कैन थैंक मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो सोच क्या रहे हो, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ओके सो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, प्लीज डोंट गिव आउट माय नेम, बट जब मैं और मेरा पार्टनर नॉटी होते हैं, राइट आफ्टर वी आर डन बीइंग नॉटी, वो सो जाता है भाई, और मुझे ना अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे क्यों हो रहा है. एंड लाइक इज दिस नॉर्मल इवन टू स्लीप राइट आफ्टर यू बीन नॉटी विद योर पार्टनर? आई डोंट इवन नो.
0: रोशी के डीएम से.
2: ओके सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज आपका नाम है मिस्ट्री कॉलर. आई डोंट वॉन्ट टू गिव आउट योर नेम बिकॉज ये बहुत ही इंटीमेट सवाल है. लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स नॉट जस्ट गाइज, अ लॉट ऑफ पीपल, ऐसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अ लॉट ऑफ पीपल फील स्लीपी आफ्टर दे हैव इंगेज्ड इन सेक्शुअल एक्टिविटी. ठीक है, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, ये एक बहुत ही बायोलॉजिकल थिंग है. ऑल्सो कई बार ऐसे होता है दैट आपने एक्चुअली इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली होती है दैट योर बॉडी नीड्स टू रेस्ट. सो ये डाउन टाइम बिल्कुल नेचुरल है. दूसरा, अ लॉट ऑफ पीपल चूज टू गेट नॉटी एट नाइट, और यूजुअली आपके ब्रेन को लग रहा होता है कि यार अब बहुत काम कर लिया, सो जाते हैं. अगर आप चाहते हो दैट योर पार्टनर स्टेज अप, क्योंकि आपको उसके बाद बातें करना अच्छा लगता है, और वट एवर योर डील इज, ट्राई शिफ्टिंग द टाइम वेन यू आर गेटिंग नॉटी. तो रात की बजाय इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, डू इट इन द मॉर्निंग या फिर इन द आफ्टरनून. चांसेस हैं दैट योर पार्टनर विल प्रोबेबली नॉट गो ऑफ टू स्लीप इमीडिएटली, बट लाइक आई सेड कि इट्स अ वेरी ब्रेन इंड्यूस्ड थिंग. आपके ब्रेन में इतने सारे फीलिंग्स ऑफ प्लेजर और रिलैक्सेशन होते हैं एट द सेम टाइम, दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ड्राउजीनेस फॉर यू.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

मेरी बेस्टी ने डिक्लेयर कर दिया है दैट यूजिंग हनी एंड व्हिप्ड क्रीम व्हाइल यू आर गेटिंग नॉटी विद योर पार्टनर इज एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल. शी वाज लाइक, रोशी आप इतने इन्वेंटिव और इमेजिनेटिव हो सकते हो व्हिप क्रीम के साथ, हनी के साथ और इवन मेल्टेड चॉकलेट के साथ. लाइक ये आइडियाज़ लोग अपनी डेली लव लाइफ में क्यों नहीं यूज़ करते. आई वॉज लाइक, बिकॉज खाने की चीज़ें किचन में होती हैं और नॉटी चीज़ें बेडरूम में. एंड शी वाज लाइक, यू सो बोरिंग. मुझे फॉर वन नहीं लगता है कि मैं बोरिंग हूँ और ये मैं इतने सालों से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सीरियसली हाउ कैन यू गेट खाने की चीज़ें इनटू योर एक्टिव गेटिंग नॉटी एयू. लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो मेरी बेस्टी की तरह हु थिंक्स इट्स अ ग्रेट आइडिया, आई मीन आप कितनी इमेजिनेटिव चीज़ें कर सकते हो रियली. अगर आपको ऐसा लगता है प्लीज़ इस पर थोड़ा शेड सम लाइट ऑन दिस फॉर मी. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हैं इंस्टा पर या एफबी पर. मान लीजिए कि मैं ये एक ओपिनियन पोल कर रही हूँ, खाने की चीज़ें बेडरूम में हाँ या नहीं, इसका जवाब भेजिएगा. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू हिट मी अप होपफुली विद द राइट आंसर, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मतलब हद है. आई एम प्रोमिसिंग यू दैट एवरी गर्ल इन द एंटायर यूनिवर्स इस प्रॉब्लम के साथ आइडेंटिफाई करेगी. जब भी हम तुम्हारे साथ खाना खाने जाते हैं, तुम हमसे जब ये पूछते हो कि हमें क्या खाना है, 10 मिनट तो पहले डिसाइड करने के लिए दे दिया करो. और अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या खाना है, व्हाट यू वांट टू हैव फॉर डिनर, ये मत कहना कि कुछ भी, एवरीथिंग इज ओके. क्या तुम्हारे पास कोई ओपिनियन नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें एग ऑन टोस्ट खाना है या स्पेगेटी एग्लियो ओलियो खाना है या दाल और नान खाना है? अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हें डिनर में क्या खाना है, तुम्हें खाक पता होगा कि तुम्हें जिंदगी से, एक लाइफ पार्टनर से, एक गर्लफ्रेंड से या बेडरूम एडवेंचर से क्या चाहिए. लाइक आई एम सो फेड अप ऑफ गोइंग आउट विद गाइज ऑन दीज रैंडम डेटिंग ऐप डेट्स, जिनसे पहले तो खैर वो मुझसे पूछते हैं कि तू क्या खाएगी. आई एम लाइक जस्ट गिव मी अ व्हाइल, मैं सैलेड सूप इससे ज्यादा क्या ही खाऊंगी. बट इस बंदे से, किसी बंदे से पूछ लो, देयर जस्ट लाइक आई डोंट नो, कुछ भी खा लूंगा. भाई क्या तू अपने ओपिनियंस घर रख के आया था? बिकॉज आई रियली डू लाइक ओपिनियटेड मैन. इन फैक्ट इफ यू आर अ रियल मैन, हेल्प मी डिसाइड कि मुझे क्या खाना चाहिए. बट इनफ ऑफ दिस रैंट. अगर आपकी भी जिंदगी में यही प्रॉब्लम है कि आपके बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड या आपके भाई या आपके पापा को पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या जिंदगी से और खाने के टेबल से, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी कैन टोटली रैंट अबाउट इट नॉनस्टॉप. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड टुडे इज माय रैंट डे. सो व्हाइल आई रैंट, तुम कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Rishi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Just to get revenge on your boyfriend, aapne uski bahut hi zyada intimate photographs leak kar di and they became viral.
3: The secret box.
2: अगर ऐसे ही आपकी जिंदगी में अमेजिंग कन्फेशंस AF हैं, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप, बिकॉज मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल खान मेरी जान. यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय,
2: हाउ आर यू?
4: आई एम गुड. Business is not going very good, and I was little, there are some disturbed city, and there was a party from my office side. So I don't wanted to go, but उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया कि नहीं नहीं, यू कम. सो आई वेंट आउट. ठीक है, वहाँ पे गए हम लोग. बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके मेरे पास नंबर्स नहीं थे. व्हाइल डांसिंग आई जस्ट सॉ वन गाय, ही वाज सिटिंग एट द यू नो बार काउंटर, ही वाज हैविंग द ड्रिंक. एंड तो उसको मैं दो मतलब एक डेढ़ घंटे से देख रही थी. वो बड़ा सीधा सा चुपचाप बैठ के अपना दारू पिए जा रहा था. एंड वाज एंजॉयिंग, एंड वो हम लोग की तरफ देख भी नहीं रहा था. वी वर एंजॉयिंग, वी वर डांसिंग एंड एवरीथिंग. तो हुआ क्या, मैं उसके पास गई. मैंने उससे पूछा कि यू डोंट डांस? So he said, no, I don't dance. Huh. Okay. Huh. So I said, you are new in the city? Huh. So he said, yes. Huh. I'm from somewhere. He told me the city name. Huh. And I said, okay. I said, would you mind to share your number?
2: Huh. Wow.
4: So he shared it. Yeah. Huh. He shared his number. But huh. I swear, I like that guy. Huh. And he was very seedha saada type ka. Huh. So when I picked up his number, I thought of calling him for a business proposal tomorrow morning. Aise karke maine uska number.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Roshi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: इतनी सारी जिंदगी और इतनी सारी मोहब्बतें जीने के बाद ना आई हैव कम टू दिस वन कंक्लूजन, वक्त किसी के पास नहीं होता है, एवरीवन इज बिजी. ठीक है, हम जिंदगी में काम भी कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं और इंस्टा की रील्स भी स्क्रॉल करना है, तो वक्त हमारा सबका गुजर जाता है. लेकिन अगर कोई आपके लिए वक्त निकाल रहा है ना, देन दैट ट्रूली मीन्स दैट दे लव यू. क्योंकि लाइक आई सेड, किसी के पास फ्री टाइम नहीं है, सब बिजी है. लेकिन अगर कोई आपके लिए फ्री टाइम क्रिएट कर रहा है, देन वो आपके लिए और सिर्फ आपके लिए बिजी नहीं है. एंड इफ समवन इज डूइंग दैट, देन उनके प्यार को थोड़ी सी तवज्जो जरूर देना. क्योंकि यू नो व्हाट, आई हैव जस्ट रिसेंटली इनकाउंटर्ड सो मेनी रिलेशनशिप्स जिसमें सामने वाले के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं था, क्योंकि वो बिजी थे काम पर, फिर घर पर, फिर उसके बाद सोना था और किताबें पढ़नी थी, और मैं कहीं पीछे छूट गई. जब तक मैंने उन्हें ये याद दिलाया कि मैं इंपॉर्टेंट थी, तब तक मेरा दिल काफी देर पहले मुड़ चुका था. And when they wanted me back, I just couldn't cover that distance to come back here. Oh.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: कुछ तो बदल गया है बॉलीवुड में। पहले फिल्म में सुपरस्टार हो तो एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती थी, बड़ी फिल्म हो तो थिएटर जाना ऑलमोस्ट कंपल्सरी था। लेकिन आज नाम बड़ा हो सकता है, फिल्म को फिर भी खुद को प्रूव करना पड़ता है। शायद बॉलीवुड बदला है, लेकिन मुझे लगता है असली बदलाव हम में आया है। हम सब अब सिर्फ स्टार्स को नहीं देखते, सिर्फ स्केल से इंप्रेस नहीं होते, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदते। हम डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है। शायद इसलिए बॉलीवुड को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका उसकी अनाउंसमेंट्स नहीं, उसकी ऑडियंस को सुनना है, और हम वही करने वाले हैं। हाय, दिस इज द मिर्ची टॉप 20। माय नेम इज सुरेन सुंदरम एंड शुरू करते हैं उस गाने से जो एक सिंपल बात याद दिलाता है। हाइप खत्म हो जाती है लेकिन म्यूजिक रह जाता है। शान एंड सुखविंदर सिंह की आवाज में दी ओजीज, दिस इज हैवान का गाना रंगियारा, कंपोज बाय प्रीतम दा एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
3: नंबर 20।

कभी नोटिस किया है, कुछ गाने एक ही दुनिया के नहीं लगते। माशूका को जरा ध्यान से सुनो, एक साइड पर मेलेडी है और दूसरी तरफ देयर इज दिस प्रोडक्शन। दोनों की लैंग्वेजेस काफी अलग है, फिर भी गाना एक ही आइडेंटिटी रखता है। इसे कहते हैं जॉनर हाइब्रिड। सिंपल भाषा में मेलेडी एक दुनिया से होती है और बीट दूसरी दुनिया से, और जब दोनों सही हाथ में मिलते हैं तो तीसरी दुनिया पैदा हो जाती है।

बेशरम रंग एफ्रोबीट और लैटिन इलेक्ट्रॉनिक टेरिटरी में चली जाती है, लेकिन शिल्पा राव की आवाज यार, वो तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में गजल वाली नजाकत है। एंड देन देयर इज दिस, क्योंकि तो

तुम्हीं में मेलोडी एक हिंदी गजल की तरह दिल से निकलती है और पीछे पियानो और स्ट्रिंग्स उस इमोशन को ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल स्केल दे देते हैं। एक तीसरा गाना भी है ये आपको अच्छी तरह मालूम है।

चन्ना मेरेया, सूफी मेलेडी, उर्दू अल्फाज, लेकिन गिटार और ड्रम्स उस हार्ट ब्रेक को आगे ढकेल रहे हैं। यानी जॉनर बदल रहा है, इमोशन नहीं। और अब विशाल मिश्रा इसी गेम को और ज्यादा तोड़ रहे हैं। अ सोलफुल हिंदी मेलेडी, बट इट्स गॉट ईडीएम, इट्स गॉट डबस्टेप, इट्स गॉट रैप, यानी कि तीन अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स एक ही गाने में। जॉनर की बाउंड्रीज म्यूजिशियन बनाते हैं, म्यूजिक खुद नहीं। ये है वक्त फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, नंबर 18 पर डेब्यू विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की कोलैबोरेशन। नंबर 18।

हमारी प्रॉब्लम इमेजिनेशन की तो कभी थी ही नहीं। इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हीरोज जो उड़ते हैं, ऐसे योद्धा जिनके पास इम्पॉसिबल शक्तियां हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, गॉड्स, डीमंस, शेपशिफ्टर्स, इमॉर्टल्स। फिर भी बॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में जाते ही जादू थोड़ा कम हो जाता है। यार मेन स्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ दो ही फिल्म्स ऐसी याद आती हैं जो इस जॉनर को सच में क्रैक कर चुकी हैं। एक 1987 1987 ऑलमोस्ट 40 साल पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया एंड देन ऋतिक रोशन की कोई मिल गया। और दोनों की एक बात कॉमन है, उन्होंने फिल्म की शुरुआत सुपर हीरो के साथ नहीं की, इंसान के साथ की। पहले हम उनके साथ जुड़े, फिर उनकी दुनिया में कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, शायद यही बॉलीवुड बार बार फिसल जाता है। हम सुपर हीरो बनाते वक्त सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहले डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिवर्स बाद में। और बॉलीवुड का दूसरा प्रॉब्लम शायद यही है कि हम सुपर हीरो फिल्म को भी कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग मसाला वाली ग्रामर से लिखने लगते हैं। हीरो है तो रोमांस होगा, रोमांस है तो गाना होगा, विलेन है तो बड़ा एक्शन होगा। और सब कुछ बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। और इसीलिए आमिर खान, आर बाल्की और साजिद नाडियाडवाला एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आमिर एक ऑब्वियस सुपर हीरो नहीं है, बाल्की ऑब्वियसली एक सुपर हीरो फिल्म मेकर नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आमिर खान सुपर हीरो बनेंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसी सुपर हीरो दुनिया बना सकता है जो बॉलीवुड की फिल्म ना लगे जिसमें सुपर हीरो हो। शायद इसी का जवाब हमारी सबसे पुरानी कहानी के पास है। बीच में वैसे एक गाना है नंबर 14 पर कॉल्ड साड़ी फ्रॉम धमाल 4, लेकिन उसको जरा साइड में करते हैं, क्योंकि जिस फिल्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी कहानी है, रितेश तिवारी की रामायण। और जिस कहानी में भगवान है, राक्षस है, बानर है, अस्त्र है, और वो सफर है जो हजारों सालों से हमारी कल्पना के हिस्से बने हुए हैं। उसका पहला म्यूजिकल ग्लिम्स किसी सुपरहीरो एंथम की तरह नहीं है, वो एक प्रार्थना की तरह है। एआर रहमान के म्यूजिक में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। नंबर 13 पर ये है जय जय राम।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यार कभी कभी किसी फिल्म को देखते हुए ना एक अजीब सी चीज होती है। फिल्म अच्छी लगे या बुरी, लेकिन उसके कैरेक्टर्स से एक रिश्ता नहीं बन पाता है, एक अपनापन फील ही नहीं होता है। एंड कॉकटेल के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ओपिनियंस थे, लेकिन मेरे लिए जब मैं फिल्म के एक्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था यार, वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। उनकी बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी, एंड शायद इसी वजह से पता नहीं क्यों स्क्रीन पर जब मैं उस दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फासला सा महसूस हो रहा था। क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा हमारी कल्चर होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, नाम है उनका जयदीप अहलावत, और उन्होंने इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी।
1: मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज हो गया जब मुझे पहली बार किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता। अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता उस स्क्रिप्ट, एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता। ऐसे ही नॉर्मल नए नए कोई आ गया बेचारे, किसी को ऐसा कहीं केरला से, नहीं नहीं, हिंदी भाषी प्रदेशों से निकले हुए लोग और वो हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं प्रॉपर। हर दूसरे वर्ड पे फंबल है, हर दूसरे वर्ड, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने की आदत है, रोमन में दे दोगे तो पढ़ लेंगे।
0: देखो मुझे लगता है कि जयदीप भाई की बात का असली वजन देवनागरी पढ़ पाने या ना पढ़ पाने में नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हो और हिंदी आपके लिए सिर्फ वो भाषा है जो आपको हेलो कोच या स्क्रिप्ट से सीखनी पड़ती है, तो भाई कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर छूट गया है। और इसलिए मुझे कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुणाल ने खुद इंग्लिश और हिंदी के इस डिवाइड पर बहुत कुछ बोला है। आप यूट्यूब पे जाके कोई भी उनका इंटरव्यू देख लो, उनकी हिंदी लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो ट्रांसलेटेड नहीं लगती, वो यार अपनी लगती है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म वाइब, उसमें उनके कैरेक्टर्स की बातचीत में वो फेमिलियरिटी है, वो फीलिंग है कि ये लोग किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बोल रहे, ये लोग तो वैसे ही बात करते हैं। और अब उसी एनर्जी को कुणाल खेमू थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर रहा है वाइब का टाइटल ट्रैक कन्फ्यूजन, इरफाना हमीद और शुभम सुपन खिलरी की आवाज में। दिस इज ऐसी मेरी वाइब।
2: नंबर 9।

0: नंबर दो पर आते ही एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है। एक तरफ वो फिल्म है जिसे रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नंबर वन पर फिर से वही गाना है जो एक ऐसी फिल्म से आया है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली करियर था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्में चल रही थी, गाने भी चल रहे थे, ऑडियंसेस भी आ रही थी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्हें इमरान हाशमी में एक्टर से ज्यादा एक इमेज नजर आती थी। किसिंग सीन्स आए तो सीरियल किसर का टैग लग गया, लेकिन फिर आई आवारापन। देखो फिल्म नहीं चली ये सब जानते हैं, लेकिन इमरान के लिए कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार अपने आप को उस इमेज से बाहर देखना शुरू किया, और वो खुद इस जर्नी को कुछ इस तरह याद करते हैं।
1: मेरा कभी नहीं था कि मुझे क्रिटिक्स को अपीज करना है। मुझ में कहीं एक चाह थी कि यार अभी बस हो गया, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा ही दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट देयर इज इमेज। एंड हाँ, फिल्में चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, बट फ्रॉम इनसाइड आई नो लाइक हिम, सो इट वाज लाइक अ फायर टू काइंड ऑफ आल्सो एक्सप्लोर अनदर फैसेट ऑफ एक्टिंग, नाउ दे कैरेक्टराइज

0: appreciated me as an actor.
1: यार कभी-कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए। उसके बाद डायरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स आए, और धीरे धीरे वो एक्टर भी सामने आया जो उस इमेज के पीछे छुपा हुआ था। और शायद इसलिए आज जब दुनिया आवारापन को सेलिब्रेट कर रही है बॉक्स ऑफिस के लिए, नॉस्टैल्जिया के लिए, इमरान हाशमी के कमबैक के लिए, तो मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि इसने इमरान हाशमी के पूरे इमेज को तोड़ दिया और बदलने का मौका दिया। एंड इजंट दैट व्हाट ग्रेट सिनेमा इज? फिल्म्स कभी कभी एक्टर को स्टार नहीं बनाती है, कभी कभी एक्टर को खुद से आगे जाने की परमिशन देती है। नंबर वन पर फिर से द रिलेशनशिप कंटिन्यूज। दिस इज तेरा मेरा रिश्ता।

0: कुछ गाने खत्म हो जाते हैं, साथ में कुछ कहानियां, लेकिन कुछ आवाजें वो कहीं नहीं जाती। आज की कहानी मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। गाने चलते रहेंगे, यादें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन द मिडशीट ऑफ 20, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: Radio Mitchy New York. It's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

लटीना चिकनी चमेली कट कटरीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कौन सा वाला डायलॉग मारूं आज? पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा, या फिर मोगैम्बो खुश हुआ, या फिर ये वाला बोलूं मेरे पास माँ है, या फिर आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो आज ना उन मूवीज के आइकॉनिक डायलॉग जो जब बड़े पर्दे पे देखे गए तो पूरे इंडिया ने सदियों तक रिपीट किए। सो इन आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां मैं लेकर के आई हूँ। ये डायलॉग्स कैसे लिखे गए, कब लिखे गए, किसने लिखे एंड व्हाट वाज द सिचुएशन जिनमें इनको लिखा गया। अब जैसे कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, इसके पीछे की कहानी क्या है बताऊंगी। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1972 मूवी का नाम अमर प्रेम, मूवी के हीरो राजेश खन्ना, मूवी की हीरोइन शर्मिला टैगोर। और इस मूवी में राजेश खन्ना की जुबान से निकलता है, पुष्पा आई हेट टियर्स पुष्पा, एक ऐसा डायलॉग जो आज भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मारते हो या फिर वाइफ को मारते हो या दोस्तों को एक ना एक बार तो बोल के जरूर दिखाते हो। तुम्हें पता है कहानी इस पूरे डायलॉग की? सो ये जो चार अल्फाज थे, पुष्पा आई हेट टियर्स पुष्पा, ये एक्चुअली में कभी एक सेपरेट डायलॉग था ही नहीं। ये लाइन एक बहुत ही लंबे डायलॉग का पार्ट थी, लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ इन चार अल्फाजों में पोटेंशियल देखा, और वो थे मूवी के डायरेक्टर शक्ति सामंत। उन्होंने इस डायलॉग को काटा और एक अलग से शॉट लिया राजेश खन्ना साहब का, एकदम उनके ट्रेडमार्क स्टाइल में। और फिर क्या था, ये चार शब्द पूरी इंडिया में क्रांति ले आए। रिलीज होने के जस्ट नेक्स्ट डे हर कोई ये डायलॉग मारते हुए सुनाई दे रहा था। पुरानी जीन्स पर दिस इज मी श्रेया। अगला कौन सा डायलॉग होगा बताऊंगी वापस आऊंगी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ये एक ऐसा डायलॉग है जो तब भी चलता था और आज भी चलता है, कितने आदमी थे। पुरानी जीन्स पर आज बात हो रही है आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियों की। सो शोले फिल्म का ये तीन वर्ड का डायलॉग कितने आदमी थे आज भी हमें जोक्स में मिल जाएगा। तुमने कभी ना कभी अपने कलीग्स पे मारा होगा, कभी फैमिली में मारा होगा। आपको पता है अमजद खान जी पे पिक्चराइज्ड इस एक डायलॉग के पीछे कितने रीटेक्स हुए थे? नहीं पता ना, इसके पीछे की कहानी बताऊंगी। लेकिन अभी नहीं, आपको मुझे ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तब मुझे पता होता है आप इधर उधर कहीं नहीं हिलने वाले हो। तो वापस आओ, विल लेट यू नो द एंटायर स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया।

सिप्पी, ये पिक्चराइज होना था अमजद खान पे। अब इस एक डायलॉग में अमजद खान की आंखों में सांभा की इंसल्ट और डर दोनों को एक साथ आना था। अमजद खान ने 40 रीटेक्स दिए हैं और तब जाकर के सलीम जावेद को और रमेश सिप्पी साहब को उनके एक्सप्रेशंस पसंद आए थे। पुरानी जीन्स पर आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां विद मी श्रेया, तो बस कहीं भी मत जाना।

पूरे 40 टेक्स लगे थे इस 3 वर्ड के डायलॉग को पिक्चराइज होने में। हाँ जी, तो आज बात हो रही है फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स की। कितने आदमी थे, डू आई नीड टू टेल यू? ऑफ कोर्स शोले फिल्म का डायलॉग था, अमजद खान पे पिक्चराइज था। फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले सलीम खान और जावेद अख्तर, फिल्म को बनाने वाले रमेश

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: मैंने

सपने। उस जमाने की फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो उस जमाने से लेकर के इस जमाने तक रिपीट किए जाते हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपने बॉस को चिढ़ाने के लिए, कभी अपने दोस्त को चिढ़ाने के लिए, कभी अपने भाई बहनों को चिढ़ाने के लिए जरूर बोला है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। सो दीवार फिल्म का ये जो डायलॉग था, ये अमिताभ बच्चन जी के लिए ही लिखा गया था। ये डायलॉग एक मंदिर में शूट होना था। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा, उन्होंने इसको शूट करने से पहले एक शर्त रखी। वो शर्त बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसको यश चोपड़ा साहब मानना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि अमित जी जिद पे अड़ गए थे तो उनको माननी पड़ी। बताऊंगी इस एक्सक्लूसिव कंडीशन के बारे में, लेकिन तुम्हें तो पता ही है वो जो मैं करती हूँ, कुछ गानों के उस पार, सो दैट यू डोंट गो एनीवेयर एल्स। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अमिताभ बच्चन जी ने जब ये डायलॉग पढ़ा, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे आइकॉनिक डायलॉग हो सकता है। उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये एक डायलॉग उनको ऑडियंस के दिल में जगह दिला सकता है। कैरेक्टर का नाम विजय, सीन शिव जी का मंदिर, डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब, एन एक्टर अमिताभ बच्चन, डायलॉग आज खुश तो बहुत होगे तुम। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा अपनी स्क्रिप्ट में, वो इस डायलॉग से बहुत इम्प्रेस हुए। इसको शूट करने के लिए उन्होंने यश चोपड़ा साहब के सामने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि ये बीच रात में शूट होगा और क्रू का कोई भी मेंबर इस सीन को शूट करने के लिए वहां नहीं होगा, होंगे तो सिर्फ अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा साहब। 15 रीटेक्स लगे जब अमित जी ने खुद के इस डायलॉग की पिक्चराइजेशन को अप्रूव किया। उन्हें ये पता था कि आज तक किसी भी फिल्म में किसी भी एक्टर ने ऊपर वाले को चैलेंज करते हुए कोई डायलॉग नहीं बोला था। ही न्यू इट वॉज गोइंग टू बी ह्यूज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां चलती रहेंगी। तो बस गाने सुन करके फौरन वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। 1

अच्छा, जब आइकॉनिक डायलॉग्स की बात ही हो रही है फिल्मों के, तो रेट्रो फिल्मों की बातें तो हो ही रही हैं। क्यों ना एक ऐसे आइकॉनिक डायलॉग की बात करें जो कि एक 90s की फिल्म का था, 1994 में आई अंदाज अपना अपना। उसका एक डायलॉग इतना फेमस हुआ कि लोग आज भी उसे रिपीट करते हैं, तेजा मैं हूँ। ये डायलॉग निकला था परेश रावल जी के मुंह से। आपको पता है अंदाज अपना अपना की कोई भी बाउंड स्क्रिप्ट नहीं थी, एज इन एक एक डायलॉग एक एक लाइन नहीं लिखी गई थी। इनफैक्ट एक्टर्स जब एक्टिंग करते थे ना, तो कई बार उस सीन को, उस डायलॉग को इम्प्रोवाइज कर देते थे, पर ये वाली जो लाइन थी तेजा मैं हूँ, ये परेश रावल ने इस सीन को शूट करते करते ऐसे ही निकाल दिया था। फिर क्या, ये 90s की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी, जो आज भी अगर किसी चैनल पे आती है तो हम लोग बिना देखे नहीं उठ पाते। पुरानी जीन्स पर आज ऐसे ही डायलॉग्स की बातें विद मी श्रेया।

शेखर कपूर, और ये डायलॉग जिन पे पिक्चराइज था अमरीश पुरी यानी मोगैम्बो। अच्छा, शेखर कपूर इस फिल्म में हमेशा मोगैम्बो के कैरेक्टर को लेकर के ना काफी डाउटफुल रहते थे। जब जावेद अख्तर साहब ने डायलॉग लिखा, मोगैम्बो खुश हुआ, तो वो शेखर कपूर के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगा। शेखर कपूर को ये डायलॉग कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने जावेद साहब से कहा कि मुझे इसमें कोई डेप्थ नहीं लग रही, बहुत ही सिंपल प्लेन है कि हाँ मोगैम्बो खुश हुआ। उसके बाद जावेद साहब ने शेखर कपूर से क्या कहा, विच मेड हिम कीप दिस डायलॉग इन द फिल्म, अभी बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

जमाने की फिल्मों के ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स जो इस जमाने तक चलते हैं। तुमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से तो ये जरूर कहा होगा, मोगैम्बो खुश हुआ। फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया। ये डायलॉग लिखने वाले जावेद अख्तर साहब, फिल्म को डायरेक्ट करने वाले शेख

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: करता है।
1: मूवी के हीरो अनिल कपूर, लेकिन ज्यादा पॉपुलर हो गए अमरीश पुरी साहब, क्योंकि डायलॉग जो उन्होंने बोला था वो बन गया था आइकॉनिक डायलॉग। इंडिया का हर बंदा आज भी ये डायलॉग बोलता है, मोगैम्बो होश हुआ। मिस्टर इंडिया का ये डायलॉग लिखने वाले थे जावेद अख्तर साहब। मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर। शेखर कपूर इस डायलॉग से कुछ खास खुश नहीं थे, वो तो इसे रखना भी नहीं चाहते थे। जावेद अख्तर साहब गए और शेखर कपूर को ये डायलॉग बोल के दिखाया कि शेखर तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगता है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इस डायलॉग में मजा ही नहीं आया, ये तो आप इमोशन बोल दे रहे हो, क्या मोगैम्बो खुश हुआ, जैसे कि शेखर कपूर खुश हुआ। फिर पता है जावेद साहब ने क्या कहा कि जब भी कपिल देव ग्राउंड पे छक्का मारेगा तो पब्लिक चिल्लाएगी मोगैम्बो खुश हुआ। जब भी कोई तीन पत्ती खेलेगा और उसके तीन इक्के आएंगे तो वो इंसान खुश होके कहेगा मोगैम्बो खुश हुआ। शेखर कपूर को ये बात समझ में आई, फिर इस डायलॉग की डिलीवरी को अमरीश पुरी साहब तो कहां से कहां ले गए। एंड दैट्स हाउ दिस बिकेम एन आइकॉनिक डायलॉग। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की और भी बातें और भी गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर के सलीम साहब, जावेद साहब, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास गए और सबने मना कर दिया था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज आइकॉनिक डायलॉग्स की बात हो रही है। दीवार की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें था मेरे पास माँ है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट लेकर के ना वो लोग बहुत सारे डायरेक्टर्स के पास गए, प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन उस टाइम पे सलीम जावेद साहब एक ह्यूज अमाउंट कोट कर रहे थे, क्योंकि उनकी जंजीर ऑलरेडी हिट हो गई थी, शोले ऑलरेडी हिट हो गई थी फॉर द स्क्रिप्ट ऑफ दीवार। सो दीवार की स्क्रिप्ट के लिए वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे। कहते हैं गुलशन राय, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो सबसे ज्यादा अगर उन्हें कुछ टच किया वो था मेरे पास माँ है। ये लाइन पढ़ते ही वो रोने लगे। अच्छा, जावेद साहब और सलीम साहब की ये जो जर्नी रही है ना, उस पे एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री आई है ऑन नेटफ्लिक्स, विच इज कॉल्ड एंग्री यंग मैन सीजन 1। उसपे जावेद साहब ने ना इस डायलॉग के पीछे की एक बहुत ही वैलिड, बहुत ही लॉजिकल कहानी बताई है। क्या है वो, अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

तो जावेद साहब का मानना था कि भाई अच्छाई तब तक नहीं पता चलती जब तक उसके सामने बुराई ना हो। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और बात कर रहे हैं आइकॉनिक डायलॉग्स की ऑफ हिंदी सिनेमा। उसमें एक इम्पोर्टेंट डायलॉग जो हमेशा के लिए दर्ज है, हम कभी ना कभी जरूर मारते हैं, और वो है मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म के लिए जब जावेद साहब ने ये डायलॉग लिखा था ना, तो ही सेड कि ये स्टैंड अलोन डायलॉग नहीं हो सकता था। इस डायलॉग का जो शशि कपूर ने कहा निरूपा रॉय के लिए अमिताभ बच्चन से, ये तब तक वैल्यू नहीं करता जब तक अमिताभ बच्चन इससे पहले तक अपने मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं गिनवाते। तो इसीलिए जावेद साहब ने पहले अमिताभ बच्चन को डायलॉग दिए, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। और तब जब ये डायलॉग आता है कि मेरे पास माँ है, दैट वॉज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियाँ चलती रहेंगी। तो बस गाने सुन करके फौरन वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है, और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं?
1: हारे हारे
0: अच्छा, आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं, और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Yeah.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कंटेंट क्रिएशन में फैमिली या फ्रेंड से फ्री प्रमोशन के लिए हेल्प मांगते वक्त उन्हें बिना ऑफेंड किए अपनी बात कैसे समझाएं?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, फैमिली और फ्रेंड्स का ना फ्री प्रमोशन मांगना मेरे ख्याल से हर कॉन्टेंट क्रिएटर का डेली स्ट्रगल है। और मैं तो कोई बड़ा नाम भी नहीं हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है और मेरे कोई ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा 3-4 बार हो चुका है कि मेरा कोई दोस्त या रिलेटिव आता है और बोलता है यार मेरा ये बिजनेस है, मैं ये वर्कशॉप कर रही हूँ या मेरा ये मेरी ये दुकान है, इसको आप ना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे इसको डाल दो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैं उनको बड़े प्यारे तरीके से बोलता हूँ यार मेरे स्टोरी पे या पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो मेरी उतनी रीच ही नहीं है, आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा, और मुझे जो लोग फॉलो करते हैं और आपका जो काम है वो अलग है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ज्यादातर मैंने देखा वो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं और वो कहते हैं नहीं करना तो सीधे सीधे बोल दो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे केस में उनको रियलिटी चेक कैसे दूं बिना उनको हर्ट किए।
4: आपको उनको रियलिटी चेक क्यों देना है?
3: आ तो मेरे पास रहे उम्मीदें लेके।
4: भले उम्मीद लेकर के आ रहे हैं, हर एक का अपना जीवन जीने का तरीका होता है। शायद उनको वो जो कर रहे हैं उनको राइट लगता है, बट ये जरूरी है कि अगर आपको वो चीज कंफर्टेबल नहीं है तो आप ना कह सके जो आपने कहा। सेकंड चीज, आप उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे सके कि आप ना क्यों कह रहे हैं। अब ये जो थर्ड चीज है कि एवरी टाइम वी विल से नो एंड पीपल विल अंडरस्टैंड, वो चीज हमें तकलीफ देती है। बहुत करके ऐसा होगा कि हम ना बोलेंगे और हम उसका बहुत जेन्युइन एक्सप्लेनेशन भी देंगे एंड पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड अस। मेक पीस विद दैट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दूसरों की हेल्प करते करते क्या आप अपने लिए चीजें डिफिकल्ट बना रहे हैं? आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जब आप थोड़ी पॉपुलैरिटी की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तो लोगों को लगता है यार ये हो सकता है उनका इंटेंट भी अच्छा हो, बुरे इंटेंट के साथ नहीं आ रहे हैं कि ये मेरे को थोड़ा हेल्प कर देगा तो मेरे दुकान के लिए, मेरे वर्कशॉप के लिए, मेरे इस काम के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं अपने एस्पेक्ट से देख रहा हूँ कि नहीं, इससे ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा, गलत ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बात समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो अच्छे इंटेंशन से आए, मैं नहीं चाहता वो इस बात का बुरा माने या उनको बेकार में हर्ट हो। तो ऐसे केस में जब वो बुरा मान जाते हैं या बोलते हैं तुमको नहीं करना है तो सीधे सीधे बोल दो, हाउ डू आई हैंडल दैट?
4: दैट इज, वी हैव जस्ट स्पोकन अबाउट दैट, कि वो वही तो बात है, आप चाहते हैं वो बुरा नहीं माने।
3: हाँ,
4: ठीक है। हम में से मेजोरिटी लोग कई बार सामने वाला बुरा नहीं माने उसके लिए हाँ बोल देते हैं, जो चीज कई बार हमें कंफर्टेबल नहीं होती।
3: सही बात।
4: फिर हम खुद सफोकेट होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है कि अगर आपको वो चीज राइट नहीं लगती या कंफर्टेबल नहीं लगती या जरूरी नहीं लगती, व्हाटएवर एक्स वाई जेड रीजन, आप ना बोल पा रहे, आई थिंक दैट इज, ये भी अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। क्योंकि हम तो मेजोरिटी करके
3: हाँ बोल देते,
4: हाँ हमें नहीं भी करना होता, हमें राइट नहीं भी लग रहा होता, पर उनको खुश करने के लिए, दैट इज अ साइन कि बहुत ही लो सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमें इतना डर है कि वो फिर हमें वैलिडेशन नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, हमारे बारे में गॉसिप करेंगे, कितने प्रकार का फियर होता है, तो हम यस बोल देते हैं। एटलीस्ट वी हैव कम टू दैट लेवल वेयर इफ आई डोंट बिलीव इन समथिंग आई एम रेडी टू से नो। नाउ आई जस्ट हैव टू गो वन स्टेप हायर दैट एवरी टाइम आई से नो, कुछ लोग समझेंगे,
3: कुछ नहीं समझेंगे,
4: कुछ नहीं समझेंगे, कुछ एक्सेप्ट करके कहेंगे इट्स ओके नो प्रॉब्लम, कुछ हर्ट और ऑफेंड हो जाएंगे और कहेंगे कौन सी बड़ी बात थी, छोटा सा ही तो था, इतना सा भी नहीं कर सकते हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूड एंड देयर एक्शंस, वी आर नॉट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सक्सेस की तरफ बढ़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आइए जानें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है जब आपने पूरी जिंदगी कोशिश की है कि आप एक अच्छा इंसान बने, और ज्यादातर आप जब आप लोगों से मिलते हैं आपका व्यवहार अच्छा होता है, लोग बोलते हैं अच्छा आदमी है, ऐसे केसेस में क्या होता है अब धीरे धीरे क्योंकि आपकी जिंदगी में छोटी सी तब्दीली आई है और लोगों को लगने लगा है कि आप थोड़े से मीडिया में हैं, आपका इंटरव्यू आता है या कहीं आप सोशल मीडिया पे दिखने लगे हैं, तो आपकी लाइफ में थोड़ी तब्दीली आई है। तब जब ये होता है ना, तो फिर वो जब आप किसी कॉमन एक गैदरिंग में जाते हैं बोलते हैं अरे इसमें बड़ा एटीट्यूड आ गया है, ये तो ऐसा हो गया है, ये तो वैसा हो गया, तो आपको लगता है अरे मैं तो वही इंसान हूँ, ये जो तब्दीली आई है मेरी जिंदगी में आई है भगवान का देन है, शुक्र है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा इंटेंशन अच्छा है, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। आई थिंक दिक्कत उस बात की होती है, दिक्कत ये नहीं है कि कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे। आपको लगता है जो लोग मेरे अपने थे, जो लोग जिनके साथ बचपन गुजरा है, एक साथ हमने इतने साल देखे हैं, वो लोग आर टर्निंग अगेंस्ट मी फॉर नो रीजन।
5: नो, दे आर नॉट टर्निंग अगेंस्ट यू। सी, एवरीबॉडी कैन ओनली बिहेव द वे दे आर। आपसे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, आप फेमस हैं या कल को नहीं है, लेकिन व्यक्ति जब व्यवहार करता है तो अपने संस्कार के अनुसार व्यवहार करता है। अगर उसके संस्कार के अंदर कंपैरिजन है और वो जेलसी को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो आपको हर्ट करेगा या प्रोवोक करेगा और कहेगा आप तो इनके अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है। ऑल यू हैव टू डू इज चेक क्या सच में वो है।
4: सही बात।
5: अगर चाहे उनका बोलने का जो तरीका है वो फीडबैक था या क्रिटिसिज्म था या ट्रिगर करने के लिए था या प्रवोक करने के लिए था, वो वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे वो हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद यू। वो वैसे व्यवहार करेंगे जो उनकी नेचर है। जिस फूल के पास जो खुशबू है वो वही तो रेडिएट करेगा ना, जिसके पास जो है वो वही देगा। अब वो दे रहे हैं। अब आपको चेक करना है केवल अगर आपको लगता है कि वो आपके
4: सच में तो नहीं है।
5: वो सच में तो नहीं है।
4: मुझे ना सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बात की तो बहुत अच्छी लगती है वो, तो कहते हैं कि कई बार मुझे लोग बोलते हैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया।
5: हाँ।
4: तो मैं बोलता हाँ तो बात वहीं खत्म हो जाती है और सामने वाला कुछ बोलने लायक नहीं रहता क्योंकि मैं जो हूँ मैं हूँ। अब आपको जस्टिफाई करने के लिए तो मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा।
5: हर बार एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं होती।

0: लेकिन अगर कहीं पर आपको लगता है ये हमारे अपने हैं और आपको अगर कोई एक्सप्लेनेशन देना है आप दे भी सकते हैं, पर हमेशा हमें वो लाइन याद रखनी पड़ती है कि सत्यता सभ्यता से बोलो, डिग्निटी से बोलो, ग्रेस से बोलो। पर कहीं पर अगर आपको लगता है आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट देम, ये शायद उनकी जेलसी है, शायद उनका इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनकी इनसिक्योरिटी है, दिखाई तो देता है ना कई बार, सो देन इट इज गुड टू हैव कंपैशन। फिर आप क्या कहते हैं ना, ये तो जो आज है आपके दुआओं से है, ये तो आपकी ब्लेसिंग से है, आपकी ब्लेसिंग्स नहीं होती तो ये दिन कभी आता ही नहीं, बिकॉज यू कैन सी कि वो देर ऑलरेडी हर्ट है, अब आप उनको क्या एक्सप्लेन करेंगे और या क्या ही सिद्ध करेंगे, आप उनको हील करते हैं। और द बेस्ट वे टू हील इज गिव देम क्रेडिट, वो एक क्रेडिट एक्नॉलेजमेंट आप उनको दे दो, उसमें आपका तो कुछ आता नहीं है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: क्या कुछ हासिल ना कर पाना आपको परेशान करता है? अगर हाँ, श्रेया दी की बात जरूर अपनाएं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, मेरे दो बहुत अजीज दोस्त हैं, उनसे मैं कुछ दिनों पहले मिला, और एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है और दूसरा भी क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन किसी कारण से वो सिलेक्ट नहीं हो पाया जिस लेवल पे उसको होना था। तो ऐसे एक शाम को मिले, हम चाय पी रहे थे, तो मेरा जो दोस्त है जो क्रिकेटर बन नहीं पाया, वो उस क्रिकेटर को कहता है कि अरे यार, तेरे पास भगवान का साथ था इसलिए तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, एक बार मेरे को भी देख के देख, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। और हमें हमेशा बचपन से लगता है कि ये जो बंदा नहीं बन पाया उसमें टैलेंट बहुत है, बहुत कमाल का टैलेंट है, शायद वो मेरे दूसरे दोस्त से बेटर क्रिकेटर है, लेकिन किसी भी कारणवश वो बन नहीं पाया। इस बात का मलाल उसमें है और उसे भी पता है, और हम सबको पता है, इंक्लूडिंग द दोस्त जो क्रिकेटर बन गया, कि वो बेटर टैलेंटेड है, लेकिन वो कहता है यार मेरी तो गलती नहीं है ना कि मुझे चांस मिला, भगवान ने मेरे पे इनायत की। अब इस फ्रेंड को कैसे समझाएं जो नहीं बन पाया?
5: इसलिए कई बार हमें जिसको डीपर विजडम कहते हैं, डीप फिलोसफी ऑफ कर्मा कहते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। सी, जब तक हम उस चीज को नहीं समझते, हमारे जीवन में सदा क्यों के बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने इसके साथ अच्छा किया, भगवान ने मेरे साथ बुरा क्यों किया, क्यों क्यों क्यों क्यों। और परमात्मा कहता है जो प्रश्न चित्त है वो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता।
4: अच्छा, जो हमेशा सवाल करता रहता है वो खुश नहीं रह सकता।
5: एक क्वेश्चन अलग होता है, टू अंडरस्टैंड क्यूरियोसिटी, एक होता है ना अपने हमारे साथ जो हो रहा है उसको क्वेश्चन करना। चित्त आपका शांत नहीं है।
4: सही बात।
5: तो जो प्रश्न चित्त है वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। अब उसको ये नहीं पता कि एक हिडन फैक्टर हमेशा काम करता है। तो आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक का टैलेंट ज्यादा है, एक का कम है। दोनों का टैलेंट सेम भी होता ना, लेकिन एक जो हिडन फैक्टर है वो है दोनों का कर्मा। वो हमेशा साथ में जाता है। और ये कोई आपके दोस्त के साथ नहीं है, तो दुनिया में बहुत केसेस है कि जो कम मेहनत करता है वो ज्यादा सफल है, जो बहुत मेहनत करता है वो सफल नहीं है। ये तो लोगों का कांस्टेंट क्वेश्चन है कि अच्छे के साथ बुरा हो रहा है, बुरे के साथ अच्छा हो रहा है। बट इसमें ये समझना ही है कि जिसको जो मिल रहा है वो उसके बोए हुए बीज का भाग्य है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

पुरपते स्तवनम शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्या विद्यां त्रियं विपुल सौख्यमनल्त कीर्तिम्।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या एक दूसरे को प्रूव करने से सच में कुछ हासिल होता है? आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, क्या होता है जब दो लोग मिलते हैं? आजकल तो मिलना थोड़ा कम हो गया, हर बार इसी बात पर झगड़ा होता है और अंत में ऐसा होता है कि हम एक क्रिकेट फील्ड पे जाते हैं और वो एक दूसरे को प्रूव कर रहे होते हैं कि कौन बेटर बैट्समैन है, कौन बेटर बॉलर है, कौन बेटर फील्डर है। और अक्सर ये जो मेरा दोस्त है जो क्रिकेटर नहीं बन पाया, वो बॉलिंग करके उसको आउट कर देता है दूसरे वाले को और कहता है कैसा बैट्समैन है तू, मैं तेरे को इतनी जल्दी आउट कर। तो ये ब्रावाडो, कौन बेटर है, ईगो, इनसिक्योरिटी, सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन इन दोनों को बैठ के कैसे समझाएं?
4: उन दोनों को ही समझना पड़ेगा, बाकी ये चीजें बहुत थकाती हैं। जो सिद्ध जिद वाला है ना, टू प्रूव समथिंग या अपनी बात पर अड़े रहना, मतलब एक ईगो की निशानी है ये, जो सिद्ध जिद है, ये चीज आपको सोल पावर को पूरा डिप्लीट कर देती है। रादर आप उस चीज को एक्सेप्ट करें कि भले मैं बहुत टैलेंटेड भी था पर नहीं हुआ, मे बी लाइफ हैव समथिंग
3: एल्स
4: प्लान्ड फॉर मी। और पिछले दिनों ही मैं एक बहुत सुंदर पढ़ रही थी कि एक ऐसे कोई क्रिकेटर होगा तो उन्होंने भी कहा कि मैं हमेशा ड्रीम करता था कि हम सब एक साथ खेलते हैं, सिमिलर टैलेंट होता है, आपके किसी फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है, आपका नहीं होता, आप भी ड्रीम करते हैं कि आप इंडिया की जर्सी पहनेंगे, और फिर धीरे धीरे आपकी एज जाने लगती है और फिर एक समय के बाद आपको उस बिटर ट्रूथ को एक्सेप्ट ही करना पड़ता है कि शायद आपको वो चांस कभी नहीं मिलेगा। एंड देन ही वाज सेइंग कि हाउ लाइफ टुक टर्न कि वो जो फिजिकली हैंडीकैप क्रिकेटर्स हैं उनका कोच बना।
3: अरे वाह।
4: और वो टीम ने जब पार्टिसिपेट किया और वो जीते तो उस समय पर उनको भी वो जर्सी पहनने का मौका मिला जो इंडिया की थी। एंड दैट्स व्हेन ही रिफ्लेक्टेड कि हमने कुछ सोचा होता है,
3: सही बात है,
4: लेकिन भगवान ने हमारे लिए उससे भी अच्छा सोचा होता है।
3: क्या बात, बहुत बढ़िया।
4: तो हमारा प्लान कई बार नहीं भी सफल हो, पर फेथ नहीं छोड़ना चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए, बिटर नहीं होना चाहिए, क्या पता उससे ज्यादा कुछ और बेटर आपके लिए लिखा हुआ हो। तो ये दोनों फ्रेंड्स को एक दूसरे को प्रूव करने में ना जा करके आज के सिचुएशन को एक्सेप्ट करके अच्छा अब क्या कर सकते हैं, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट। यू एंजॉय क्रिकेट, नो, इट इज नॉट अबाउट हु इज बेटर, इट्स अबाउट हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट और हाउ कैन आई एंजॉय द स्पोर्ट इवन टूडे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: दोस्ती यारी में बाउंड्रीज क्यों जरूरी हैं? आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मेरे दो दोस्त हैं, एक अपने काम में बहुत माहिर है और एक दूसरा है वो टैलेंटेड ज्यादा है लेकिन उसको मौका नहीं मिला। तो जब हम मिलते हैं कई बार क्या होता है, जो कुछ बन गया वो आके मुझे बोलता है, यार तू उसको बोला कर ना, हर बार ये पब्लिकली मुझे ऐसे इंसल्ट ना करे, मैं कुछ बन गया हूँ, मेरा नाम है, सबके सामने ऐसा बोलता है। दोस्ती अपनी जगह है लेकिन प्रोफेशनली अच्छा नहीं लगता। ये जो दूसरा दोस्त है जो माहिर बहुत है लेकिन उसको मौका नहीं मिला, वो आके मुझे बोलता है कि तुम उसको बोलो ना यार, अगर वो मुझे खाली पब्लिकली एक्नॉलेज कर दे कि मेरी वजह से वो जो बना है, जो जैसा भी बना है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है, टैलेंट मुझ में ज्यादा था, तो मैं दोनों की बात सुनता हूँ और फिर मुझे समझ में नहीं आता दोनों को बोलूं क्या, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स जस्ट अबाउट सिटिंग टुगेदर। बोले भाई ठीक है, जो है सो है, अब यही है जिंदगी में।
4: नहीं, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें दो जनों के कार्मिक अकाउंट में अपने को एंटेंगल नहीं करना है।
3: अच्छा,
4: वो दोनों का आपस में कार्मिक अकाउंट है।
3: हाँ।
4: उनको जो कहना है वो एक दूसरे को कह सकते हैं।
3: हाँ।
4: आप अथॉरिटी पर होते।
3: हाँ।
4: और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती
3: तो
4: आप जरूर किसी को इशारा देते। पर अगर आप फ्रेंड्स हैं और कोई हमें, ये कई सिचुएशंस में हो जाता है, आप उसको बोलना ना।
3: हाँ।
4: पर हमें कोशिश करके किसी के भी कार्मिक अकाउंट में एंटेंगल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ये दोनों का आपस में कुछ अकाउंट हो, आपका दोनों के साथ ही ना हो। आपका दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स हो, दोनों को आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो और ना आपको दोनों से कोई प्रॉब्लम हो। उन दोनों को हो सकती है, पर द मोमेंट यू गेट एंटैंगल्ड, आप भी अपना एक नया कार्मिक अकाउंट दोनों के साथ शुरू करेंगे जिसको आपको ही सेटल करना पड़ेगा। तो हमें इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर सारा का एक सवाल आया है कि जब किसी को ये महसूस होने लगे कि वो अपने आसपास के लोगों पर बोझ बन रहा है तो उसे क्या करना चाहिए।
3: बोझ कई प्रकार के होते हैं। आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं
2: जी, बिल्कुल,
3: फिजिकली डिपेंडेंट हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हैं, तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बोझ की बात कर रहे हैं। कई बोझ से हम निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो आप अपना कुछ इस प्रकार से सेट कर सकते हैं कि आप ना उन पर डिपेंडेंट हो। लेकिन एक जगह है जहाँ हमें डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, वो है इमोशनल।
2: बहुत अच्छी।
3: फिजिकली डिपेंडेंट भी हम वैसे नहीं चाहते, पर कभी कभी सर्कमस्टांस ऐसी बन जाती है। हम बीमार हैं, हमें उस समय किसी का सहयोग लेना पड़ता है। हम बुजुर्ग हैं तो भी हमें सहयोग लेना पड़ता है। तो उसको ये नहीं समझना चाहिए हम किसी के ऊपर बोझ हैं। लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी मैं नहीं समझती होनी चाहिए। इमोशन हम क्रिएट करते हैं। कोई कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करता है, उसके बाद भी अंदर किस प्रकार से फील करना है वो मेरी चॉइस है। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। बोझ हमेशा सोच का होता है। बोझ कभी भी जिम्मेवारियों का नहीं होता है, बोझ सोच का होता है। तो बोझ हो सकता है कि आपकी अपनी सोच ही वो बोझ क्रिएट कर रही है, शायद किसी को भी नहीं। बहुत कारणों में कई बार ना ऐसा होता नहीं है, रियलिटी नहीं होती है। कई बार बुजुर्ग माता पिता को लगता है बच्चों पर बोझ है, वो कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें तो बोझ लगता ही नहीं है। तो हमारी सोच में ऐसा होता है और इसलिए हमें फील होता है कि शायद हम बोझ हैं। तो बोझ सोच का होता है, तो सोच को परिवर्तन।
2: बहुत बढ़िया। बेसिकली आप कह रही हैं कि आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग अ बर्डन, बट इट इज द करेजियस एक्ट ऑफ लेटिंग पीपल लव यू।
3: सी, एज लॉन्ग एज Asking for help is not wrong, but वो help के पीछे intent होनी चाहिए अपने को empower करके independent बनाने की।
2: बिल्कुल।
3: कभी कभी आप help मांग रहे होते हैं, पर वो help आप अपने को independent बनाने के लिए नहीं, और ही आप धीरे धीरे उस व्यक्ति पर dependent होते चले जाते हैं।
2: वो नहीं है।
3: बाकी हम सबको कभी ना कभी थोड़ी help लगती है। It is okay.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्च।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर तुम्हारी आंखें खुल गई हैं तो कांग्रेचुलेशंस, अभी जो है दिन ऑफिशियली तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी बन चुका है और तुम अकेले नहीं इस दिन को मिर्चीदार बनाने वाले हो। मैं बोलूं तो प्रिसिला तुम्हारे साथ हूँ। मिर्ची मॉर्निंग्स अभी अभी शुरू हुआ है, यहाँ पर चाहे इमेजिनरी हो सकती है तुम्हारे मेरे बीच में, लेकिन एनर्जी जो है, वाइब जो है, वो बिल्कुल रियल है। और मंडे हो, ट्यूजडे हो या फ्राइडे हो, मैं और तुम मिलकर दिन को मिर्चीदार बना ही लेते हैं हर रोज। मेरा आज का लाइफ का फंडा पता क्या है? लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है एक्सेप्ट फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशंस। सो अभी वेदर यूर ड्राइविंग टू वर्क, गेटिंग द किड्स रेडी फॉर स्कूल, प्रिटेंडिंग टू वर्क फ्रॉम होम या फिर एक्चुअली वर्किंग, आई हैव गॉट योर बैक। अगले कुछ घंटों तक मैं तुम्हारे साथ में रहने वाली हूँ। यहाँ पर मिलेगा तुमको बॉलीवुड, देसी वाइब्स, मिर्चीदार तड़का, काफी सारा गॉसिप, मस्ती, म्यूजिक एंड अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और वो कॉन्वर्सेशन जो सुबह सुबह तुम्हें बोलने और सोचने पर मजबूर कर दे। अब मुझे बताओ तुम्हारी मॉर्निंग का मूड आज क्या है। इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, MIRCHIPRI। Yes, do follow me there. Or WhatsApp कर सकते हो मुझे 9033 मिर्ची पर, 9033647244 पर। तो वॉल्यूम को बढ़ा लो, मिर्ची का थोड़ा सा वाइब चढ़ा लो और सुनते जाओ मुझे। Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माई देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब हम करने वाले हैं थोड़ी सी टाइम ट्रैवलिंग. सबसे पहले चलते हैं 1776 में. अमेरिकन रेवोल्यूशनरी सोल्जर नेटन हेल को न्यूयॉर्क में ब्रिटिश ने स्पाई के चार्ज में हैंग कर दिया. उनके फेमस लास्ट वर्ड्स थे, आई रिग्रेट दैट आई हैव बट वन लाइफ टू लूज फॉर माई कंट्री. भाई व्हाट अ माइक ड्रॉप मोमेंट. 1862 में इब्राहिम लिंकन ने प्रिलिमिनरी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू की, वार्निंग दैट एनस्लेव्ड पीपल इन कन्फेडरेट स्टेट्स वुड बी फ्रीड इफ दोज स्टेट्स डिडंट रिटर्न टू द यूनियन. 1914 में इंडिया का कनेक्शन, जर्मन क्रूजर SMS एमडन ने वर्ल्ड वॉर वन के दौरान मद्रास यानी कि आज का चेन्नई के हार्बर पर शेलिंग की. इमेजिन चेन्नई की मॉर्निंग विद फिल्टर कॉपी और अचानक से हिस्ट्री का ये नोटिफिकेशन आ गया. 1975 में सैरा जेन मूर ने प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड को सैन फ्रांसिस्को में शूट करने की कोशिश की लेकिन मिस्ड. 1980 में इराक ने ईरान इन्वेट किया, बिगिनिंग एन 8-year वॉर दैट कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल्टीज. आज का हिस्ट्री का लेसन खत्म होता है मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे, मुझे बताओ व्हाई डू यू लव हिस्ट्री. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. Stay tuned and stay hot.
2: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our rival.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Mirchi people. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. Now let's check your Mirchi Mornings पर weather report. अभी एडिसन में temperature है 57 degrees Fahrenheit. Skies जो है वो थोड़ी सी cloudy और wind की वजह से feel हो रहा है around 54 degrees Fahrenheit. यानी कि एक light jacket जो है आज उसे साथ में ले जाना बिल्कुल मत भूलना. Day time में clouds के साथ साथ हल्की सी बरसात, थोड़ा सा shower expected है. Temperature जाएगा up to 67 degrees Fahrenheit, लेकिन feel हो सकता है 65 degrees के आसपास. Rain का chance है 6% और अगले 24 आवर्स में अराउंड 1 मिलीमीटर से भी कम थोड़ी सी बरसात हो सकती है. रात को टेम्परेचर डिप करेगा अराउंड 54 डिग्री फारेनहाइट तक विद अबाउट 10% चांस ऑफ रेन. विंड्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट से अराउंड 9-10 माइल्स पर आवर आ रही है और ह्यूमिडिटी जो है वो 72-79% है. बेसिकली आज तुम्हारे बाल जो है वो अपने मन की करने वाले हैं. कल के कंपैरिजन में आज थोड़ा सा कोल्डर है. कल का हाई था 73 डिग्रीज फारेनहाइट और आज है 67 डिग्रीज फारेनहाइट. सो देसी रूल ऑफ द डे, अम्ब्रेला को साथ में कैरी करो बिकॉज इट कुड रेन. वेयर अ लाइट जैकेट, जिसे कभी उतारना पड़ा तो लेयर के प्लेयर बन के उतार भी सकते हो. और साथ साथ में चाय को अपना इमोशनल support banao because you would need that chai today. And of course keep yourself hydrated, wear your sun protection with SPF 50+++, and of course mirchidar vibes banaye rakho. Mujhe yani ki Priscilla ko follow karo insta aur x par. Mera handle hai mirchipris, that is mirchipris, or whatsapp ka number hai 9033647244. Coming up, mirchidar bangers for you, ekdam garma garam hai. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: तीन खबरें अराउंड द वर्ल्ड से मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सबसे पहले इंडिया पुश फॉर परमानेंट सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड चेक रिपब्लिक यानी कि वाइस गार्ड 4 का बैकिंग मिल चुका है. स्लोवाकिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को अपकमिंग सुपर पावर कहा है और बोला है इंडिया को परमानेंट मेंबर के तौर पर टेबल पर होना चाहिए. ये सपोर्ट न्यूयॉर्क में V4 इंडिया मीटिंग के दौरान आया है. नंबर 2 पर इंडिया के बिहार के जमुई से एक डिस्टर्बिंग अपडेट आई है. कोचिंग से घर लौट रहे एक टीनेज बॉय और गर्ल को अलेजिडली कुछ लोगों ने रोका, असॉल्ट और मलेस्टेशन किया. केस में पुलिस ने मेन अक्यूज नंदन यादव को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया है. पुलिस के मुताबिक उसके लेग में गोली लगी है. इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट की टोटल नंबर 5 बताई जा रही है. एंड लास्टली क्रिकेट फैंस, जहीर खान इज द न्यू हेड कोच ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स फॉर IPL 2027. ही टेक्स ओवर फ्रॉम स्टीवन फ्लेमिंग, एंडिंग फ्लेमिंग्स लॉन्ग CSK कोचिंग रन. जहीर वॉज प्रीवियसली अ मेंटोर विद लखनऊ सुपर जायंट्स. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. और व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033 6472 44. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं।
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
0: नहीं,
1: मैं कल को
0: फोटो खींचा।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
0: नहीं सर, क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you on Mirchi Mornings. और अब थोड़े से देसी स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं.
2: मिर्ची वॉच इट.
1: एशियन गेम्स 2026 में इंडिया का मेडल टैली जो है ऑफिशियली 7 पर पहुंच चुका है. 1 gold, 4 silver, or 2 bronze अब तक इंडियंस ने कमा लिए हैं. और पहला गोल्ड जो है वो आया है हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम से. फाइनल में श्रीलंका को इंडिया ने 147 runs से हरा दिया और टाइटल भी रिटेन कर लिया है. इंडिया ने पहले बैटिंग करके 216 runs बनाए फॉर 3 wickets. स्मृति मंदाना ने 79 runs बनाए ऑफ 45 balls. ऋचा घोष ने अनबीटन 49 रन्स बनाए ऑफ 22 balls. मतलब कि रिचा ने कहा है भाई फाइनल है तो थोड़ा सा फायरवर्क्स के साथ बैटिंग करना बनता है. श्रीलंका की टीम 69 पर ऑल आउट हो गई और दीप्ति शर्मा ने 3 wickets लेकर बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरा का पूरा संभाल लिया था. अब बाकी के 6 मेडल्स जो है उनमें से 4 silver और 2 bronze हैं. शूटिंग से 5 मेडल्स आए हैं और एमएमए में सुचिका टरियाल का हिस्टोरिक ब्रॉन्ज आया है. तो स्कोर बोर्ड जो है वो काफी सिंपल है. इंडिया हैज 7 मेडल्स एंड द गोल्डन अकाउंट इज ऑफिशियली ओपन. मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूं मिर्ची मॉर्निंग्स. फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. और हाँ, व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244. अबे मिर्ची, दे आर बैंगर्स का टाइम है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रसन्ना, तुम्हारे साथ में सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग्स एंड ऑल माय बर्थडे बेबीज आउट देयर। आज का दिन ऑफिशियली तुम्हारा तो है, लेकिन आज के दिन कैलोरीज काउंट नहीं होती और विश जो है वो कंपल्सरी होता है, और केक का सेकंड पीस जो है वो ऑब्वियसली नेसेसरी होता है। आज सितंबर 22 को बॉर्न हुए लोगों की लिस्ट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है। तुम्हारे अलावा म्यूजिक साइड पर वी गॉट जोन जेट, एंड्रिया बोचेली, निक केव और व्हाइट स्नेक, वेल, डेविड कवरडेल, और के पॉप फैंस तुम्हारे लिए ट्वाइस की नायू और स्ट्रे किड्स की संगमिन, आज वो दोनों भी बर्थडे स्क्वाड में शामिल है। हॉलीवुड से वी गॉट टॉम फेल्टन, यस ड्रेको मैलफॉय हिमसेल्फ, देन वी गॉट बिली पाइपर और कॉमेडियन एक्ट्रेस बॉनी हंट, ये सभी आज ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे देसी बर्थडे गैंग में बॉलीवुड एक्ट्रेस रंजीता कौर, एक्ट्रेसेस शांति प्रिया एंड सना सईद, एंड साथ साथ में सिंगर होस्ट रिमी टोमी, फॉर्मर क्रिकेटर अंबाटी रायडू और सिक्किम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पवन कुमार शामलिंग, ये सब शामिल हैं। तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, तुम्हारा ईयर जो है ब्लॉकबस्टर हो, बैंक बैलेंस जो है वो सपोर्टिंग एक्टर नहीं बल्कि लीड रोल में आकर मेन कैरेक्टर एनर्जी दिखाने लग जाए, और मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में फिलहाल बर्थडे विश किया तुम्हें मिर्ची मॉर्निंग्स पर। यू कैन सेंड मी योर शाउट आउट्स, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हो, 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए चिपक के बैठो यहीं पर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं तो थक गई भाई साहब, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। मेरा नाम है प्रिसिला, अब तुम सुनने वाले हो मिर्ची मॉर्निंग्स पर गोल्ड रेट अपडेट।
2: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at 4290, 4290 डॉलर पर ट्राई ऑन्स के साथ गोल्ड के प्राइजेस आज ट्रेड कर रहे हैं। आइए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी हो, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें और 0% इंटरेस्ट पे, जीरो डाउन पेमेंट के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें ज्वेलरी अप्रूव होने पे आज घर आपके साथ जा सकती है और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना किसी इंटरेस्ट के आप पे कर सकते हैं। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Welcome to the last hour of Mirchi Mornings. और अब top 3 updates from around the world.
2: Mirchi, hour got 3.
1: सबसे पहले अमेरिका में मीडिया सीन काफी इंटरेस्टिंग हो गया है. व्हाइट हाउस ने लॉन्च किया ट्रंप टीवी द एसेंशियल स्टेशन. ये 24/7 वीडियो स्ट्रीम फीचरिंग President Trump's speeches, administration announcements, and past footage. This comes after the White House banned CNN, MS Now, and Politico from its premises after Trump accused the outlet of fake news. Major TV networks then suspended their shared White House pool coverage. Number two par, India mein skies are getting busy. Jodhpur mein Tarang Shakti Air Exercise September 26th se lekar October 12th tak hone wali hai. US ka F-35, France का रफाल, UAE का F-16 और इंडिया के रफाल, तेजस, मिराज 2000, जैगवार और सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे. मतलब कि जोधपुर में इस बार गर्मी के साथ साथ इंजन की आवाज भी फुल वॉल्यूम पर होने वाली है. एंड लास्टली क्रिकेट से, इंडिया बीट जापान बाय जस्ट 2 रन्स इन अ हिस्टोरिक वन ऑफ T20I. रेन की वजह से मैच सिर्फ 5 ओवर्स असाइड हुआ. इंडिया में 32/4 एंड जापान रीच्ड 30/3. And the final over decided everything. Basically, 5 overs, but full 3-hour ka drama. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein quick news updates from around the world tumhe diya. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp par mera number hai 90336472444. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की.
1: हाँ
2: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया है, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस
1: तुम्हारा
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज के स्टार्स क्या बोल रहे हैं ये जानने का टाइम आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर। दिस इज प्रिसिला विद यू।
2: मिर्ची राशि जोन,
1: इट इज यानी कि मेष राशि। आज पेशेंस रखो बॉस, किसी को टाइम चाहिए तो उन्हें रश मत करो, हर चीज का आंसर अभी ही इसी सेकंड नहीं होता है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा पॉज का बटन दबाने का टाइम आ चुका है। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 6। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज रोमांस और पर्सनल मैटर्स में स्टेबिलिटी का वाइब है। जो डाउट्स रिसेंटली माइंड में रेंट फ्री रह रहे हैं उनको थोड़ा सा एविक्शन नोटिस मिल सकता है आज। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, सीरियस कॉन्वर्सेशन से बचने के लिए जोक मारना आज काम नहीं करने वाला है। जो कमिटमेंट या रिलेशनशिप टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको डायरेक्टली एड्रेस करो, कभी कभी LOL के पीछे फीलिंग्स हाइड नहीं होती है बेटा। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 11। कैंसर यानी कर्क राशि, आज सॉफ्टनेस इज योर सुपर पावर। क्लियर कम्युनिकेशन रखो, स्पेशली घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रैक्टिकल मैटर्स में। दिल भी संभालो, पेपर वर्क भी संभालो, दोनों कर लोगे। लकी कलर फॉर यू इज ऑफ वाइट, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, मनी मैटर्स में डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स केयरफुली चेक करो और बजट से बाहर हीरो बनने की ज्यादा जरूरत है नहीं। फाइनेंशियल ग्लो अप पेशेंस से आएगा, रिलैक्स। लकी कलर इज मेरी गोल्ड, लकी नंबर इज 9। वर्गो यानी कन्या राशि, फैमिली के साथ सपोर्टिव मोमेंट्स मिल सकते हैं और रिलायबल जेनरस एक्शन से फाइनेंशियल गेन्स का भी चांस है। बेसिकली गुड कार्मा का कैशबैक मिल रहा है अब तुम्हें। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 7। अब ये याद रखो, स्टार्स सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे ही हाथ में है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ऐ

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Okay, Rush is on part 2 wale gather around. Main hoon Priscilla tumhare saath mein and this is Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rush Zone.
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि एनर्जी हाई रहने वाली है. सोशल प्लान्स प्रोजेक्ट सब कुछ बट पीस मेंटेन करने के चक्कर में अपनी कंफर्ट सैक्रिफाइस मत कर देना. नो भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है डार्लिंग. लकी कलर इज रास्पबेरी. लकी नंबर इज 5. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. लीगल या प्रॉपर्टी मैटर्स में बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के जंप मत करो और रिलेशनशिप में साइलेंट लॉयल्टी को वैल्यू करो. ट्रस्ट कभी कभी लाउड वर्ड्स से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है. लकी कलर इज डीप टील. लकी नंबर इज 8. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि. आज एक स्वीट मैसेज, क्रिएटिव आइडिया या अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन मूड ब्राइटन कर सकता है. बस फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेट पर ले जाना. ओके, लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 3. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि. लॉन्ग टर्म गोल के लिए फ्रेश मोटिवेशन मिलेगी. सो व्हाई वेट. प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ एक सॉलिड स्टेप आज ही ले लो. Future you might actually send you a thank you note. Lucky color for you is charcoal blue. Lucky number is 10. Aquarius yani kumbh rashi. Slow and steady is your vibe today. Time or resources protect karo aur emotional healing ko space do. Har feeling ka forensic analysis karna zaruri nahi hota bhai. Lucky color is mint green. Lucky number is 1. And last but not the least, Pisces yani ki mean rashi. Heart ki intuition ko listen karo, especially sincere conversations mein. Bas एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो. इमेजिनेशन बॉलीवुड लेवल की हो सकती है. रियलिटी पर उतरना पड़ेगा. थोड़ा सा स्क्रीन प्ले सिंपल करना पड़ेगा. लकी कलर फॉर यू इज सॉफ्ट गोल्ड. लकी नंबर इज 12. एंड दैट्स योर राशि ज़ोन पार्ट 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझसे जुड़ो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, this is Mirchi Mornings का curtain call. मैं वो Priscilla तुम्हारे साथ में, लेकिन जाने से पहले एक फिल्मी अपडेट देना तो बनता है. आज गुजरात के एकता नगर में 72nd National Film Awards हुए और Article 370 took home Best Feature Film. While Yami Gautam won Best Actress, Mamuji and Kartik Aaryan shared the Best Actor का award. और आदित्य धार दुरंधर को इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री नहीं मिल पाई, लेकिन नेशनल अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर उन्होंने कहा कि होपफुली अगर दुरंधर क्वालिफाई करे तो नेक्स्ट ईयर वापस आ जाएंगे. बेसिकली उनका कहना था पिक्चर अभी बाकी है मेरे ऑडियंस. और वैसे अब तुम्हारा मॉर्निंग का साउंड ट्रैक भी बाकी है मेरे दोस्त. थोड़ा सा दिल पर पत्थर रखकर ही मेरे बिना प्लेलिस्ट सुनना आगे का, क्योंकि अब मुझे तो जाना पड़ेगा. एंड दिस वॉज मिर्ची मॉर्निंग्स फ्रॉम माय साइड. मैं बोले तो Priscilla तुमसे टाटा बाय बाय अलविदा शब्बा खैर कह रही हूँ. फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज. और कभी कभी हेलो भी बोल दिया करो यार. व्हाट्सएप पर एक आध मैसेज भी ड्रॉप करो तो बिना कॉन्टेस्ट के भी कर सकते हो. 9033 मिर्ची इज माई नंबर. दैट्स 9033647244. ड्राइव सेफ, स्माइल मोर, और याद रखो सुबह सुबह की चाय और मिर्ची मॉर्निंग्स दोनों एकदम मिर्चीदार होनी चाहिए. टाटा बाय बाय फ्रॉम मी. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस एक फिल्म के पीछे ये फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, हेलो हेलो, वेलकम वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, जीना तमान एंड आशा पारेख, सब ना बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर एक फिल्म ऐसी आई जिसकी वजह से शर्मिला टैगोर और आशा पारेख के बीच में ना जय हो गई, वो भी पब्लिकली बोले तो, मतलब सबके सामने नहीं, लेकिन हाँ फिल्म मैगजीन्स ने इनके बारे में जम करके लिखा। कभी कोई फिल्म मैगजीन आशा पारेख का व्यू लिख रही थी और कभी कोई फिल्म मैगजीन एक्चुअली में शर्मिला टैगोर का पीओवी लिख रही थी। वेल, कौन सी थी ये फिल्म अभी आपको बताऊंगी, वापस श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है, रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है, क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है, क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन था उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोज।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी का
4: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
3: लगाया नहीं
4: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
3: नहीं।
4: मैं कल को
3: फोटो खींचे,
4: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार, शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
3: अरे
4: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
3: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
3: दिखाइए
4: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
4: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
3: कहाँ होता है बताइए।
5: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
7: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शर्मिला टैगोर का कहना था कि वो फर्स्ट चॉइस थी फॉर दिस फिल्म, और उसके बाद जब उन्होंने एक फिल्म मैगजीन को इंटरव्यू दिया और यही बात कोट कर दी तो भाई घमासान मच गया दो दोस्तों के बीच में, क्योंकि आशा पारेख का कहना था कि वो कभी भी सेकंड चॉइस नहीं थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म कटी पतंग, जिसमें थे राजेश खन्ना जी, शक्ति सामंत ने ये फिल्म बनाई थी। एंड कहते हैं कि भाई शर्मिला टैगोर ने कहा कि ये फिल्म सबसे पहले उनके पास गई थी, शी डिनाइड डूइंग द फिल्म क्योंकि शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, तो फिर वो ये फिल्म कर नहीं पाई एंड इसीलिए फिर इसका रोल गया आशा पारेख को। आशा पारेख ने जब ये आर्टिकल पढ़ा एक फिल्म मैगजीन में, उन्होंने उसी मैगजीन को जाकर के फिर से इंटरव्यू दिया और कहा कि ऐसा कभी भी नहीं था, वो पहली चॉइस थी, शक्ति सामंत उनके पास आए थे ये रोल लेकर के। वेल लेटर ऑन शक्ति सामंत ने ये बात एक्सेप्ट भी की कि उन्होंने सबसे पहले इस रोल के लिए अप्रोच किया था शर्मिला टैगोर को। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कटी पतंग की बातें चलेंगे आज, और इस फिल्म के गाने भी होंगे, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पता है मुझे उस जमाने के गानों की एक बात इतनी खास लगती थी कि गानों में ना सेट्स या फिर विजुअल्स हीरो नहीं होते थे, बल्कि हीरो होते थे लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉन्ग, द हीरो एंड द हीरोइन. अदरवाइज विजुअल्स वर सो सिंपल एंड सो सूदिंग टू आइज. तो अगला जो गाना मैं कटी पतंग का आपको सुनाने वाली हूँ ना, उसमें राजेश खन्ना एकदम नॉर्मल सा कोट पहने हुए हैं, व्हाइट साड़ी में क्लैड हैं आशा पारेख. और आजकल जो विंग लाइनर हम लगाते हैं ना, ये आशा पारेख से ही शुरू हुआ था. मेकअप के नाम पे उन्होंने सिर्फ विंग लाइनर लगाया हुआ है. और उस टाइम पे 90s में चला करती थी ना, पिकनिक मनाते थे हम जाकर के किसी भी ग्राउंड में बैठ जाते थे. सो आशा पारेख एक ग्राउंड में है अपनी सहेलियों के साथ, पिकनिक मन रही है और राजेश खन्ना आने का उनके इर्द गिर्द घूम करके बस कह रहे हैं ये शाम मस्तानी. ये गाना कमिंग योर वे किशोरदा की आवाज, ओनली ऑन पुरानी जीन्स. मैं हूँ श्रेया. फेसबुक और इंस्टा पे यू कैन रीच आउट टू मी, आरजे श्रेया विद लव. दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव इज माय हैंडल.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस टाइम पे ना विलेंस का भी मेजर रोल होता था हिंदी इंडस्ट्री। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड प्रेम चोपड़ा काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि वो एज अ फेमस विलेन एस्टैब्लिश हो जाए, जिससे कि उनके पास फिल्मों के रोल आए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। बट आफ्टर दिस फिल्म प्रेम चोपड़ा और बिंदु जी के पास ढेर सारे रोल्स आते थे। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म कटी पतंग की, राजेश खन्ना एंड आशा पारेख की ये फिल्म जो कि शक्ति सामंत ने बनाई थी। Well, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्म में रोल करने के बाद फाइनली उनका ड्रीम फुलफिल होगा। भाई शोले के बाद तो हर कोई गब्बर बनना चाहता था, तो बस प्रेम चोपड़ा इसी लगन में लगे रहते थे कि एक बार वो किसी तरह विलेन का रोल ऐसे क्रैक करें कि हर कोई उनको विलेन के रोल में एक्सेप्ट कर ले। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड फ्रॉम द फिल्म कटी पतंग। इसके बाद बिंदु और प्रेम चोपड़ा के पास इतने सारे रोल्स आते थे कि फिल्में साइन करते करते दोनों थक जाते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आशफ पारेख फिल्में तो बहुत सारी कर रही थी, लेकिन कोई भी फिल्म उनका ड्रीम, उनका सपना नहीं पूरा कर पा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आशा पारेख की बात कर रही हो, यानी कटी पतंग की बात कर रही हूँ। वेल, आशा पारेख बैग्ड फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म कटी पतंग। आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने ढेर सारे विद मी श्रेया। और सुनो, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आराम से कह सकते हो, आरजे श्रेया विद लव। दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव इज माई हैंडल।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना, उसका बाना, सका बाना। मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मुकेश जी।
3: कौन?
4: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा।
3: नहीं हो पाया भाई?
4: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
3: नहीं हो पाया
4: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
3: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
4: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
3: क्या समझ रहे हो भाई।
4: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
3: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
4: सर, वो
3: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
4: नहीं सर
3: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
4: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
3: है।
4: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
3: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
4: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
3: क्या करा दू
4: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
3: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
4: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
3: मैं गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
4: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया। उसमें ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
3: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
4: अच्छा सर
3: मुझे चाहिए अपनी वापस।
4: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
3: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
4: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
5: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
3: तो जान निकाल दी हमारी।
5: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
3: कुकड़ू कू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप उस श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपरहिट फिल्म कटी पतंग टुडे। वेल, शक्ति सामंत ने डायरेक्ट की थी, काका यानी राजेश खन्ना थे एंड इसमें थी आशा पारेख। अच्छा, आराधना इससे पहले रिलीज हो चुकी थी शक्ति सर की, सो ही डिसाइडेड कि क्योंकि आराधना के गाने इतने सुपर डुपर हिट हुए थे, ही डिसाइडेड कि वो अपनी म्यूजिक टीम सेम रखेंगे, यानी आर टी बर्मन साहब का म्यूजिक रहेगा, आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स रहेंगे और किशोर दा ही सारे गाने जो हैं वो गाएंगे फॉर काका यानी राजेश खन्ना। अब भाई राजेश खन्ना पे जितने भी पिक्चराइज गाने थे वो किशोरदा कटी पतंग के लिए तो गा ही रहे थे, लेकिन एक ऐसा गाना हुआ जिसमें किशोरदा आउट ऑफ इंडिया थे और शक्ति सामंत को ये गाना पिक्चराइज करना था, शूट करना था, तो फिर उन्होंने मुकेश जी को बुलाया और मुकेश जी ने ये खूबसूरत गाना गाया। वेल, इस गाने में एक बोट है, उस बोट पे काका है, उस बोट पे खूबसूरत ब्यूटीफुल लुकिंग आशा पारेख है वो एंड क्लैड इन अ वाइट साड़ी और उनका वो विंग लाइनर भी लगा हुआ है और राजेश खन्ना नाव चला रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नैनीताल की नैनी झील का यू नो सीन है। इसी गाने की तरफ आपको ले जाते हुए मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ और बैक टू बैक आज कटी पतंग फिल्म की बात हो रही है। वेल, अगला जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना एक्चुअली में एक बंगाली गाने से इंस्पायर्ड था। आर डी बर्मन साहब ने इस गाने को कंपोज किया था, आनंद बख्शी साहब ने इसको लिखा था और पियानो पे बैठे होते हैं काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख ना उस कश्मकश में है कि अब वो एक विडो हो चुकी हैं, वो इस लड़के की बातों में या इसकी मोहब्बत में नहीं आ सकती, पर दिल कहाँ मानता है ये उनके चेहरे पे साफ दिखता है। सो कहते हैं कि शक्ति सामंत ने जब ये सब्जेक्ट उठाया था तो उन्हें लगा था कि शायद इंडियन ऑडियंस इस बात को एक्सेप्ट ना करेगी, बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था। बट देन ही रियलाइज्ड कि कुछ अलग करना पड़ेगा लोगों को, समाज को, जो कुछ ऐसी रीतियां हैं जो यू नो शुड बी चेंज्ड फॉर बेटरमेंट, वो दिखानी पड़ेगी। और तब उन्होंने बनाई कटी पतंग। इट वॉज बेस्ड ऑन अ नॉवल एज वेल। पुरानी जीन्स पे प्यार दीवाना होता है कमिंग अप राइट नेक्स्ट फ्रॉम दिस फिल्म कटी पतंग। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

बिंदु जी को जब डायरेक्टर शक्ति सामंत ने ये बताया कि उन्हें एक डांस नंबर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो बस वो काफी नर्वस हो गई थी, लेकिन वो चाहती थी कि ए ग्रेड फिल्मों में उन्हें किसी तरह एक ओपनिंग मिल जाए। वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती थी, तो उन्होंने इस फिल्म में डांस नंबर करने के लिए अग्री कर लिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ कटी पतंग की, एंड द डायरेक्टर जिन्होंने भाई बिंदु जी को ये बात बोली थी वो शक्ति सामंत, द मैन हु डायरेक्टेड दिस ब्यूटिफुल फिल्म कटी पतंग। लेकिन जब बिंदु जी को ये ब्रीफ मिली कि उन्हें एक कैबरे परफॉर्मेंस देनी है और वो काफी नर्वस हो गई। वेल, जब ये गाना सामने आया तो लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल भर देते थे। बिंदु जी का ब्यूटिफुल एंड वेरी हॉट परफॉर्मेंस इन द सॉन्ग मेरा नाम है शबनम। पंचम दा यानी आरडी बर्मन साहब खुद उतरे थे मैदान में गाने के लिए दिस सॉन्ग विद आशा ताई। इस गाने के बाद बिंदु जी को ढेर सारे ऑफर्स आने लगे। यही गाना कमिंग योर वे। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो,

शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शनि बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

फ्लेक्स, तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: क्या सोचने लगी?
1: सोच रही हूँ, तुम क्या सोच रहे हो?
0: मैं

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ एंड आज कटी पतंग की बातें चल रही हैं और इस फिल्म के गाने. वेल, मुझे लगता है कि उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. आशा पारेख जो कि एक विडो थी, वो प्यार तो करती हैं राजेश खन्ना से, लेकिन वो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती. राजेश खन्ना जो उनसे बहुत प्यार करते हैं समाज के चक्कर में, वो अपनी बातें एक्सप्रेस तो करते हैं पर तो उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. वेल, इस फिल्म के बहुत खूबसूरत गाने हैं जिनको आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लिखने वाले हैं आनंद बख्शी और गाए हैं मोस्ट ऑफ देम किशोर दा ने. सो अगला जो गाना है, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री का पहला गाना था जिसमें ब्रेकअप पे जुबान से भले ही कड़वे शब्द निकल रहे हों हीरो के यानी राजेश खन्ना के, पर जब आप इस गाने का पिक्चराइजेशन देखोगे तो मुस्कुरा रहे हैं और अपना गम ना मुस्कुराहट से निकालते जा रहे हैं. ये जो मोहब्बत है, कमिंग अप राइट नेक्स्ट. मैं हूं श्रेया.

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन्स लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गाय
1: नहीं दीदी, मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुनके बनाया है?
1: कोई फोटो चुनके नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

होली पे ये गाना ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और मुझे लगता है कि आर डी बर्मन साहब ने और आनंद बख्शी साहब ने, किशोर दा ने मिलकर के ना आपको हमेशा के लिए होली का एक गाना दे दिया इन द फिल्म कटी पतंग। वेल आज इसी फिल्म की बातें हो रही हैं, इसी फिल्म के गाने हो रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप होली सेलिब्रेट करो और ये गाना ना हो। वेल इस गाने में ना काका यानी राजेश खन्ना कोशिश तो करते हैं कि वो आशा पारेख को कलर लगाएं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आशा पारेख एक विडो दिखाई गई हैं उस ज़माने की, तो ये करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उनको छेड़ते हुए वो बाकी सबको कलर लगा देते हैं। आज ना छोड़ेंगे बस, समझो ली। कमिंग अ राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आरटी बर्मन साहब और आनंद बख्शी ने मुझे लगता है कि अपने सारी मेलेडीज का जो बटुआ होता है ना वो खाली कर दिया था इन दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ कटी पतंग की बात हो रही है और मैं बातें कम इस फिल्म के गाने ज़्यादा सुना रही हूँ। वेल जनरली ऑल ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म वर पिक्चराइज ऑन ऑफकोर्स काका यानी राजेश खन्ना एंड फिल्म की हीरोइन आशा पारेख, लेकिन ज़्यादातर गाने जो है ना लाइक 10 में से जो 9 गाने नहीं 8 गाने हैं वो किशोर दा ने गाए हैं या फिर मुकेश जी ने गाए हैं, यानी दे आर पिक्चराइज ऑन काका। लेकिन एक गाना जो कि लता जी ने गाया है जो पूरी फिल्म की थीम पे है कि कैसे आशा पारेख जो एक विडो हैं, बचपन में ही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो एक विडो हो जाती हैं, वो चाहती तो हैं कि उनकी जिंदगी फुल पतंग की तरह उड़े, लेकिन क्योंकि समाज में ऐसे रीति रिवाज हैं कि उनकी जिंदगी कटी पतंग हो गई है। एंड इस गाने में ना राजेश खन्ना एक कमरे में बंद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर हो जाएं आशा पारेख से, वो उनसे प्यार ना कर बैठे, पर ऐसा होता कहाँ है। दिल और प्यार उस इंसान को ना उसका कास्ट रिलीजन उसकी सिचुएशन देख करके नहीं आता, ये तो बस आ जाता है सामने वाले पे प्यार। यही गाना कमिंग योर वे। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, बट ऐसे कहाँ जाती हूँ, हाईवे पे आपको लेके जाऊंगी। वेल, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जो चाहते हैं कि उनकी जाना जो है वो थोड़ी देर और रुक जाए, उनसे दो बातें और करके जाए, लेकिन जाना तो घर वापस जाना चाहती है और वो ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहती है लोगों को कि वो आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप चाहते हैं कि दो से और चार बातें हो जाएं। तो भाई आपके लिए गाना, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक विद मी ऐसे वन टू वन तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल। ऑन दैट नोट, गुड नाइट।

0: Radio Mitri, New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Pattern, my friend, pattern. बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलती है पैटर्न पे। सबसे पहले कोई मूवी आएगी जो कि एक ट्रेंड को सेट करेगी और फिर उसके बाद उसी ट्रेंड से रिलेटेड मूवीज आती रहेंगी। ये पैटर्न मेरे दिमाग में आज घर से यहां आते हुए आया, लेकिन यहां तक बात रुकती नहीं है। जैसे धुरंधर और हनुमान अंश जैसी मूवीज आगे आने वाले काफी टाइम तक कुछ पैटर्न क्रिएट कर गई हैं ऑलरेडी, वैसे ही कुछ रियलिटी शोज भी हैं जैसे कि डांस शोज, सिंगिंग शोज, और अब रियलिटी शोज का एक पैटर्न चल रहा है। जैसे बिग बॉस आया था, उसके बाद लॉकअप और अलायंस जैसे शोज भी आए थे। सो आई थिंक कि ये जो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, नॉट जस्ट बॉलीवुड, ये सब कुछ एक पैटर्न से चलता है। डू यू अग्री विद मी ऑर नॉट, एंड डू यू हैव सर्टेन मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस? मैं यहाँ पे कुछ गाने प्ले करता हूँ, तब तक आप मुझे बताओ आपने कोई पैटर्न नोटिस किया हो तो। मैं सोशल मीडिया पर आपको मिल जाऊंगा मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH is the spelling of my name. फिलहाल आते हैं ब्रेक के उस पर। दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली, थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई।
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
1: हाँ
2: सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे सर, वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया,
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकुरुकू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

देखो कोई अच्छा जॉनरा या बड़ा जॉनरा देखने का मजा तब है ना जब वो खुल के सामने आए, ऐसा नहीं कि एक आध मूवी आ गई उसके बाद गायब। इसीलिए आई थिंक ये मूवी बन रही है एक एलियन साईफाई मूवी जो कि बहुत बड़े लेवल पर बन रही है, इट इज एक्चुअली गेटिंग ट्रेंड। क्योंकि ट्रेंड से ही तो ट्रेंडिंग होता है इंसान। एक्चुअली अक्षय कुमार एक मूवी में काम कर रहे हैं जिसकी आधी शूटिंग हो चुकी है, मूवी का नाम होगा समुख। ये अगले साल हमें देखने को भी मिल जाएगी और ये इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े बजट के साथ बन रही है कि शायद ये वो सारे पाप धो देगी जो उन्होंने कुछ साल पहले जोकर नाम की मूवी करके किया था। इफ यू रिमेंबर देन आई एम सॉरी फॉर यू, इफ यू डोंट रिमेंबर यू आर रियली गुड इन योर लाइफ। एक्चुअली जब हम एलियन मूवीज के बारे में बात करते हैं तो हमें तीन ही मूवीज दिमाग में आती हैं, कोई मिल गया, पीके और जोकर। कोई मिल गया और पीके तो फिर भी काफी अच्छी चली थी, लेकिन जोकर मूवी एक्चुअली जोकर ही रह गई थी। और ये जो समुख मूवी आ रही है अक्षय कुमार की, ये कितने बड़े बजट पे हमें इससे पता लगता है कि इसमें ऑस्कर नॉमिनेटेड क्रीचर इफेक्ट्स आर्टिस्ट एलेक गिलिस हैं जिन्होंने एलियन और प्रीडेटर जैसी बड़ी हॉलीवुड मूवीज में काम किया है। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस के लिए बुलाया गया है ल्यूक टंबर को जो कि मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग और वेनम जैसी बड़ी मूवीज में काम कर चुके हैं। सो यस, आई थिंक फाइनली हमें एक बड़े अच्छे लेवल की एलियन मूवी देखने को मिल सकती है जिससे अक्षय कुमार अपने पिछले सारे पाप धो देंगे जो जोकर करके उन्होंने किए थे। तभी कहते हैं रिग्रेट इंसान से काफी बड़ी चीजें करवा देता है। डू यू अग्री विद मी ऑर नॉट? खैर ये तो अगले साल ही पता लगेगा जब ये मूवी फाइनली रिलीज होगी। फिलहाल कुछ बढ़िया से गाने सुनेंगे ओनली ऑन मिर्ची। मेरा नाम क्रिश है, इट्स ऑस।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

फाइनली 9 साल बाद नई लिस्ट आई एंड पीपल वर एक्चुअली हैप्पी सीइंग दिस। पिछले हफ्ते सीबीएफसी की एक नई लिस्ट आई जिसमें नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। 18 मेंबर्स की ये टीम एक्चुअली 9 साल बाद चेंज हुई है, बट दिस टाइम ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो अगले 3 साल में क्या क्या होने वाला है वो हमें अभी तो पता नहीं चल सकता, लेकिन इसके लिए अब एक नए रूल्स की लिस्ट भी निकाली गई कि क्या क्या चेंजेस सीबीएफसी में किए गए हैं। देखो, इसमें ना मैक्सिमम चेंजेस जो हैं वो सब सेम ही है कि आप ज्यादा गोर और वायलेंस नहीं दिखा सकते, कुछ ऐसे सीन्स नहीं दिखा सकते जिनकी आवश्यकता आपको प्रॉपर ना हो इन द मूवी स्टोरी। जैसे कई बार होता है कि आप कोई मूवी देखते हो तो उसमें कुछ सीन्स की जरूरत नहीं होती। रीसेंट एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है टॉक्सिक मूवी का। हमें पता है कि उसमें मैक्सिमम सीन्स की जरूरत नहीं थी। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, रोमांस रोमांस रोमांस, रोमांस प्रो मैक्स तक चला गया था, लेकिन स्टोरी बीच में गायब हो गई थी। तो ऐसा ना हो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली गई कि भाई ये सब मत करो जब तक वाकई में मूवी में जरूरत ना हो। लेकिन इसके ऊपर भी सोशल मीडिया पे एक अलग वॉर छिड़ गई कि क्या बात कर रहे हो आप, अगर किसी को एक्शन ही देखना हो तो, अगर किसी को रोमांस ही देखना हो तो इसके लिए अलग मूवीज बनती हैं, आप वो देखें, वो आप अपने घर में बैठ के आराम से देखें। ये थिएट्रिकल रिलीजेस और ओटीटी रिलीजेस जो होती है ना, जो ए ग्रेड मूवीज होती हैं, इनको हैंडल कर लेंगे हमारे सीबीएफसी। नए मेंबर्स की लिस्ट में पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े नाम हैं, प्रियदर्शन जैसे नाम हैं, रूपाली गांगुली, प्रीति जिंटा एंड सुनील शेट्टी एंड सम मोर पीपल जिन पर मेरा थोड़ा एक्चुअली पिछली टीम से ज्यादा ट्रस्ट है। बट लेट्स सी, 3 साल के लिए आए हैं, 3 साल में ज्यादा मूवीज पे बैन ना लगे हम तो यही चाहते हैं बस, बिकॉज वी आर टायर्ड ऑफ इट। Do you agree? I know you do. सर हिल रहा होगा आपका, बताना मुझे। मिर्ची क्रिश के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं। KRISH is the spelling of my name. This is Mirchi. It's up.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: या वांट टू फील दैट, कम ऑन गर्ल, बी द बीट।

अच्छा ये तो आप अग्री करोगे कि अब गरबा इवेंट सिर्फ गुजरात साइड नहीं रह गए, ये आ गए हैं पूरा वर्ल्ड वाइड। ऑफकोर्स हर टाइप की कम्युनिटी इसको अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करती थी पहले भी, लेकिन जब से सोशल मीडिया बढ़ने लगा तब से ये ट्रेंड हर जगह आने लगा कि हर साल अब गरबा से रिलेटेड शॉपिंग होगी, एक्सेसरीज अटायर सब कुछ खरीदा जाएगा। ऐसे में बड़े बड़े ब्रांड्स पीछे कैसे रह सकते थे। अब एक बड़े से ब्रांड ने एक 8 लाख का नवरात्रि स्पेशल हैंडबैग लॉन्च किया है। यस, एंड ये 8 लाख का इसलिए बिकॉज इसमें 39,500 बीड्स लगे हुए हैं, 475 मिरर्स लगे हुए हैं। देखने में लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि गुजरात के अगर आप नॉर्मल स्ट्रीट पर जाकर एक बैग खरीदोगे जो कि आपको 500 रुपए का मिल जाएगा। अब आप सोचो कि आपने सिर्फ 2 या 3 दिन के इवेंट पर जाना है तो उसके लिए आप 8 लाख का बैग प्रेफर करोगे या 500 रुपए का। आई नो वॉट आई विल प्रेफर, बट एनीवेज मैं कह रहा हूं ट्रेंड इतना बड़ा है कि ब्रांड्स तो ब्रांड्स, मीम्स तो मीम्स। क्योंकि पिछले दिनों मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा जिसपे लिखा था रेंट अ गरबा पार्टनर। यस, दिस इज ट्रू। अब ये ऑथेंटिक है या नहीं ये नहीं पता, बिकॉज ये एज अ मीम डाला गया था, एक पोस्टर आया था जिसमें पूरा पैकेज लिखा था, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, यानी वो पार्टनर आपके साथ जाके गरबा करेगा, साथ में सेल्फीज लेगा तो कितने पैसे लगेंगे। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि इज दिस दैट इंपॉर्टेंट, आप अपने दोस्तों के साथ भी तो जा सकते हो। बट ये सिर्फ मेरा मानना है, आप मुझे बताना इज दिस क्रेज फॉर गरबा ट्रू या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया एस्थेटिक्स के लिए है। जस्ट अ थॉट, मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि गरबा करो मजे करो, लेकिन ये एस्थेटिक्स के चक्कर में आप रेंट मत करना पार्टनर या 8 लाख का बैग मत खरीदना, बाकी आपकी मर्जी। दिस इज मिर्ची, मेरा नाम क्रिश है, इट्स ऑल।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हर काना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

नहीं, कौन कहता है बॉलीवुड में हॉरर मूवीज नहीं बनती, हमसे बात तो करो। बिकॉज आज के पांच का पंच में वी आर टॉकिंग अबाउट पांच पावरफुल हॉरर मूवीज जो कि बॉलीवुड ने बनाई थी। कुछ साइकोलॉजिकली हैं, कुछ मेंटली हैं, कुछ सही में आपको डरा देने वाली हैं। सो इनमें से दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 5 पर थी बुलबुल स्टारिंग तृप्ति डिमरी, नंबर 4 पर थी 13B फियर हैज अ न्यू एड्रेस स्टारिंग आर माधवन। अब आते हैं नंबर 3 पर, अ क्वेश्चन मार्क नाम की ये मूवी 2012 में आई थी, विच इज अ फाउंड फुटेज हॉरर जॉनरा मूवी डायरेक्टेड बाय एलिसन पटेल। इस जॉनरा की मूवीज एक्चुअली इंडिया में अभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करी गई हैं, बट दिस मूवी इज रियली गुड। पूरी मूवी आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, लाइक रॉ फाउंड फुटेज, जिसमें 7 कॉलेज फ्रेंड्स वेकेशन में पहाड़ों पर गए हैं और यहां वो अपना फीचर फिल्म का असाइनमेंट भी शूट कर रहे हैं, लेकिन यहां उन 7 लोगों के अलावा और भी कोई है, वो आपको देख लेना। फिर आता है नंबर 2 पर ओजी राम गोपाल वर्मा जी की ओजी मूवी भूत। 2003 में एक ऐसी मूवी बनाना जिसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा CGI VFX कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ लोगों को पावरफुल परफॉर्मेंसेस के थ्रू डरा रहे हो, ये काम है ओजी RGV यानी राम गोपाल वर्मा का। स्पेशली बाय द परफॉर्मेंस ऑफ उर्मिला मातोंडकर, जो कि इस मूवी में एक वाइफ बनी है जो कि पजेस हो जाती है। इसके आगे जस्ट वॉच इट एंड यू विल डेफिनेटली लव इट। अब बचती है नंबर 1 की मूवी और एक मेरी तरफ से स्पेशल मेंशन जो कि आज भी आपको डराता है, वो कौन सी मूवीज हैं गेस कर सकते हो। सोशल मीडिया पे मिर्ची क्रिश के नाम से मिल जाऊंगा, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम, वहां बताना इफ यू आर एबल टू गेस द फर्स्ट नंबर की मूवी। दिस इज मिर्ची एथा।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

नहीं, आपने ऐसे कह कैसे दिया कि बॉलीवुड में हॉरर मूवीज तो बनती नहीं है यार। फिर मैंने भी आज के पांच का पंच में हॉरर मूवीज की लिस्ट खोली। ये जेन्युइनली हॉरर मूवीज हैं बॉलीवुड की जो यू शुड डेफिनेटली वॉच एटलीस्ट वंस। पांचवें नंबर पे हमने बात करी बुलबुल मूवी के बारे में। फोर्थ नंबर पर आई 13B फियर हैज अ न्यू एड्रेस। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया अ क्वेश्चन मार्क मूवी के बारे में। सेकेंड पे आई ओजी राम गोपाल वर्मा की ओजी मूवी भूत। अब आते हैं नंबर वन पे, लेकिन वेट, एक स्पेशल मेंशन में अपनी ऑल टाइम फेवरेट हॉरर मूवी को जरूर दूंगा। मूवी का नाम है राज। 2002 में आई ये मूवी, वाज डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट। ये उनकी क्लासिक हॉरर मूवी थी एंड सही बताऊं तो आज भी पता नहीं क्यों अगर आप इसको देख लो तो हल्का सा डर आपको लग जाएगा। बिपाशा बासु का नाम सुनते ही ना कुछ सिलेक्टेड चीजें आपके दिमाग में आती हैं, जिनमें से आई थिंक सबसे पहले राज ही आती होगी। एंड ट्रस्ट मी, इसके चार पार्ट्स हैं, अलग अलग हैं, स्टैंड अलोन हैं, लेकिन आप इसके आगे भी जितने मर्जी पार्ट्स बना लो, दिस क्लासिक मरने के बाद के बदले वाली मूवी इज स्टिल द बेस्ट पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी। अब आते हैं नंबर वन पे, मैं बात कर रहा हूं तुम्बाड़ मूवी के बारे में। नाउ 2018 में आई ये मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय राही अनिल बर्वे। लीडिंग एक्टर थे सोहम शाह। मूवी जब एक्चुअली रिलीज हुई थी ना, इट डिड नॉट ग्रैब दैट अटेंशन, लेकिन व्हेन री रिलीज्ड इन 2024, इसके बाद इसकी कल्ट फॉलोइंग ऐसी उठी कि अब इसके सीक्वल पर जोरों से काम चल रहा है एंड मजा भी आएगा। ये एक्चुअली हॉरर हॉरर नहीं है, बट ये एक थ्रिलर हॉरर मूवी है। यानी आपको डर उतना नहीं लगेगा, लेकिन आपकी आंखें मूवी पे स्टक रहने वाली हैं बिकॉज ऑफ द फोकलोर अटैच्ड टू इट। इसीलिए ये देख के आपको बहुत मजा आएगा। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट, देन ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग ऑन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर / थ्रिलर मूवीज ऑफ बॉलीवुड। सो ये फटाफट देख लेना। अगर मैंने इस पूरी लिस्ट में कोई भी हॉरर मूवी मिस कर दी है जो जेन्युइनली आपको लगता है बॉलीवुड में एक हॉरर मूवी है, देन मुझे मेरे सोशल मीडिया पे जरूर बताना। मे बी मैंने ना देखी हो, वैसे ऐसा मुश्किल है, बट बताना जरूर। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। फिलहाल कुछ बढ़िया से गाने सुनते हैं ओनली ऑन मिर्ची एथ हार्ट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दिस इज ऑल्सो प्रूफ कि क्यों अगर कोई मूवी बहुत ही अच्छा चल गई, बहुत ही अच्छा कमा लिया, तब भी जरूरी नहीं है कि उसको हाईएस्ट अवार्ड मिले। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है, मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर मूवी की। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज नॉट इवन नॉमिनेटेड इन ऑस्कर 2027। ये इसीलिए बिकॉज सारी मूवीज जब ज्यूरी मेंबर्स बैठकर देख रहे थे तो बाद में ये बताया गया कि धुरंधर को इसीलिए सिलेक्ट नहीं करा बिकॉज वो एक्चुअली हमारे इंडियन कल्चर को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करती। इट इज एंटायरली अ डिफरेंट स्टोरी और हमें कुछ पैरामीटर्स पे जज करना होता है कि हम यहां से ऑफिशियल एंट्री कौन सी भेजेंगे। तो फाइनल राउंड में पहुंची थी तीन मूवीज, गोंधल, अंक एंड मैं वापस आऊंगा। आई लव मैं वापस आऊंगा, लेकिन फाइनली सिलेक्ट हुई एंड इवेंचुअली इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के लिए गई गोंधल मूवी, जो कि एक मराठी मूवी है एंड इट इज डूइंग रियली रियली वेल। ये कल्चर को भी बहुत अच्छे से बताती है। आई हैव नॉट येट वॉच्ड इट बट आई हैव नाउ हाई एक्सपेक्टेशंस बिकॉज यार कोई मूवी ऑस्कर्स तक पहुंच गई है धुरंधर जैसी मूवी को धुरंध करके। तो धुरंध कोई वर्ड होता है क्या? I don't think so. मैंने बना लिया चलो आज के लिए, लेकिन ये मूवी डेफिनेटली अच्छी होगी। सो आई वॉन्ट टू वॉच इट। अगर आपने देखी है तो मुझे बताना यार इसका रिव्यू, इज इट दैट गुड? मिर्ची क्रिश के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, KRISH इज स्पेलिंग ऑफ माई नेम। दिस इज मिर्ची एथ आर्ट।

मंडे का तो अपना स्टारडम होता है और फ्राइडे की अपनी अलग फैन फॉलोइंग। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। लेकिन हमारा जो मंगलवार है वो बॉलीवुड फिल्म के उस सीन की तरह होता है जहाँ कहानी क्वाइटली आगे बढ़ रही होती है। हीरो भी आ चुका होता है, हीरोइन से मुलाकात हो चुकी होती है, विलन का भी हिंट मिल ही गया होता है और ऑडियंस बस ये देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल हमारे वीक की तरह मंडे की एंट्री तो हो गई, अब पिक्चर अपनी रिदम पकड़ चुकी है और वैसे भी ये जो हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो एक्साइटमेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है। तो चलिए इस ट्यूजडे की स्टोरी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, मूड हल्का रखते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना देते हैं और बॉलीवुड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपके इस हफ्ते का जॉनर चूज करना हो तो वो बॉलीवुड का कौन सा जॉनर होगा? रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टेट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस ट्यूसडे यानी मंगलवार की फिल्म का अगला सीन शुरू करते हैं इस जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Na virbala, burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो मुकेश जी.
2: कौन?
3: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
2: नहीं हो पाया भाई.
3: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
2: हाँ नहीं हो पाया
3: सर. वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है. वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
2: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी पे नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये.
3: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई.
3: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर. वो
2: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है. मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
3: नहीं सर
2: एक्चुअली आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
3: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
2: क्यों नहीं हो पाया
3: सर. वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: है
3: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या.
3: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
2: क्या करा दू
3: सर. मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की.
2: कैसी FIR दिमाग खराब हो गया तेरा. पागल तो नहीं है तू.
3: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे. आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
2: क्या गुस्सा ना करूँ. नई गाड़ी थी हमारी.
3: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
2: उसमें
3: ग्रीस ग्रीस लगाया. उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
2: ग्रीस कितने का. 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में.
3: अच्छा सर
2: मुझे चाहिए अपनी वापस.
3: सर आप इतना गुस्सा ना करें.
2: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
3: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें. हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें. और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
4: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ. मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
2: तो जान निकाल दी हमारी.
4: मुकेश आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे. बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए. गुस्सा खत्म करिए.
2: कुकड़ू कू
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

बॉलीवुड म्यूजिक का डिबेट कभी खत्म ही नहीं होता, ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं। पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए। दोनों का ना अपना ही एक अलग चार्म है, एक मेमोरी बनाता है लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है। और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है। वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज़ की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज़ निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफ़र चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज हंगामा आ रहा है ग्रैंड हैवी इमोशन सॉन्ग के पीछे से। जी हां, हम सबका फेवरेट डोला रे डोला। यार जब आप डोला रे डोला देखते हो तो लगता है कि बस ग्रेस, रिदम और शान ही शान है, क्योंकि माधुरी और ऐश्वर्या का डांस और प्योर पोइट्री है। पर पर्दे के पीछे एक सीन फुल पावर कंजम्पशन मोड में था। जी हाँ, ये गाना इतने बड़े सेट पर शूट हुआ था, इतनी ज़्यादा लाइटिंग और इतने जनरेटर्स के साथ कि पूरी यूनिट मोस्टली रात को ही काम करती थी। और लाइट्स इतनी हैवी थी कि मुंबई के इवेंट वालों को जनरेटर्स मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि देवदास के सेट ने ऑलमोस्ट सब कुछ बुक कर लिया था। मतलब देवदास का जो दर्द था ना, वो स्क्रीन पे तो चल ही रहा था, और जो भी शादी वाले लोग हैं उनका दर्द रियल ग्राउंड में दिख रहा था, क्योंकि जनरेटर्स ही नहीं मिल रहे थे। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना जब इमोशंस बड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ब्लॉकबस्टर लेवल का होता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे की फिल्म ही हंगामे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते ही अगला हॉट सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गणपति बप्पा आते ही एक ही फीलिंग होती है, नई शुरुआत की, ऑब्स्टेकल्स हटाने की और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ने की। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और करियर में भी ना कभी कभी वही जरूरी होता है, बिकॉज व्हेनेवर वी हियर अबाउट लेऑफ्स, AI, टेक्नोलॉजी चेंजेस, यंगर कलीग्स मूविंग फास्ट, हमारे माइंड में एक ही सवाल आता है, एम आई स्टिल रेलिवेंट? तो शायद वक्त आ गया है अपने नेक्स्ट चैप्टर को और थोड़ा क्लियरली देखने का। सो न्यू जर्सी, मार्क द डेट, September 27th, 4-time TEDx स्पीकर्स, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स एंड मल्टी अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ आ रहे हैं न्यू जर्सी में। दे आर कमिंग टू शेरेटन एडिसन फॉर एन इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप। They have helped 1500 plus mid-career professional accelerate their promotions, get double promotion, improve their visibility, strengthen leadership presence, attract bigger opportunity and even get 50 to 180% salary raises. This workshop is designed to help you revitalize your career, reposition your value and move forward with more clarity and confidence. So, aaj hi jaiye, register kijiye at playitful.com/NJ. That's playitful.com/NJ and mark the date September 27 at Sheraton Edison, New Jersey. तो बप्पा के सीजन्स में ऑब्स्टेकल कम हो और ग्रोथ का रास्ता थोड़ा और क्लियर हो, इसलिए सुनते ही अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बना दिए यार। सारे दिमाग
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं
2: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं,
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: लेंस लगे फोटो खींचे?
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है। अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
1: क्या सुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है। हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं।
1: अच्छा,
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों, हर दिन न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर इकोनॉमी की इतनी बातें होती है ना कि कभी कभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतने सारे सोर्सेस से अपडेट्स इतने सारे मिलते रहते हैं, लेकिन हर अपडेट पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी तो ये समझना है कि वॉट रियली मैटर्स टू अस। तो अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स में घर भी शामिल है तो आज की बात आपके काम ज़रूर आ सकती है, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स और इतने सारे ऊपर नीचे जो मार्केट के हो रहे हैं, व्हाट दैट रियली मींस फॉर होम बायर, ये बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली गाने से। यार वैसे तो इस गाने में स्क्रीन पे कटरीना कैफ का रॉ रस्टिक और हाई एनर्जी डांस तो है ही, लेकिन पर्दे के पीछे गणेश आचार्य जी जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर है, उन्होंने बताया था कि कटरीना ने इस गाने के लिए लगातार 8 दिन रिहर्सल किए थे और कभी कभी 8 to 9 hours एट अ स्ट्रेच। तो सोचिए दोस्तों, ये कोई स्मूथ बॉलरूम नंबर नहीं था। फास्ट बीट्स, इंटेंस एक्सप्रेशन, देसी फुटवर्क और फुल स्टेमिना का टेस्ट था। और स्क्रीन पे कैटरीना एकदम फायर तो लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बॉडी को लिटरली कमांड देना पड़ रहा था कि बस थोड़ा और, एक टेक और। और जी हाँ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, करण जौहर, सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी इंप्रेस हुए थे। और ना ही सिर्फ वो, पूरी ऑडियंस काफ़ी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना बॉलीवुड में एक हिट हुक स्टेप के पीछे पूरा बूट कैंप छुपा होता है, और यही गाना वो साबित करता है। वैसे ये वो गाना था जिसमें यार कैटरीना और ऋतिक थे, और पहली बार ऐसा था कि ऋतिक नहीं नाच रहे थे और कैटरीना नाच रही थी, और हम सब कैटरीना को देख रहे थे। तो जी हाँ, ये थी पर्दे के पीछे की वो मज़ेदार दास्ता फॉर द सॉन्ग चिकनी चमेली, और वही सुनते हैं अभी। लेकिन आप भी मुझे बताना कि ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको भी जाननी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए यह अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ चांदनी कुड़ी, ओ चांदनी कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और उनके सोलो सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर कुछ साथ गाने गाते हैं, कुछ डुएट्स बनाते हैं, तो ओ हो हो वो दिल को छू जाते हैं। एंड वन सच जोड़ी इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इतने खूबसूरत गाने इनके बने हैं बॉलीवुड में। एंड वन सच ब्यूटिफुल सॉन्ग इज 2012 की मूवी जब तक है जान का सांस। जी हाँ, AR रहमान का कॉम्पोजिशन है, जिसमें मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी सोलफुल आवाज़ से भी और भी खास बना दिया। और ये गाना वैसे तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है, जिसमें पहली बार वो दोनों साथ में आए थे और उनकी केमिस्ट्री और सिंगर्स की आवाज़ का परफेक्ट ब्लेंड देखने मिला था। तो चलिए अभी हम सुनेंगे सांस फ्रॉम जब तक है जान। लेकिन आप भी मुझे बताइए कि इन दो जोड़ियों की ऐसी कौन सी ब्यूटिफुल मेलेडीज है जो आपको बहुत पसंद है। चल मी और इंस्टाइट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक सुनते हैं जब तक है जान का गाना सांस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: fiesta la burka. Mirchi, burka. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल
2: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

हमारा करियर भी ना कभी कभी फुल बॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। फर्स्ट हाफ में सेटअप, इंटरवल पे कंफ्यूजन, और सेकेंड हाफ में डिसाइड होता है कि हीरो कमबैक कैसे करेगा। श्याम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धिया। और अगर आपको भी लग रहा है कि आपके करियर की स्टोरी को भी एक स्ट्रॉन्गर सेकेंड हाफ चाहिए, देन न्यू जर्सी, मार्क द डेट, September 27, शेरिटन एडिसन में आ रहे हैं 4-time TEDx स्पीकर्स, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स एंड मल्टी अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ, आपके करियर की स्टोरी को एक फ्रेश कमबैक देने के लिए, विद एन इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप डिजाइंड स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स हु आर रेडी टू रीथिंक व्हाट कम्स नेक्स्ट। एंड दे आर नॉट जस्ट कमिंग विद थियरी, दे हैव ऑलरेडी वर्कड विद 1500 प्लस मिड करियर प्रोफेशनल्स, हेल्पिंग देम एक्सेलरेट प्रमोशंस, गेट डबल प्रमोशंस, इंप्रूव विजिबिलिटी, स्ट्रेंथन लीडरशिप प्रेजेंस, अट्रैक्ट बिगर अपॉर्चुनिटी एंड इवन गेट अप टू 50-180% सैलरी रेजेस। सो थिंक ऑफ दिस वर्कशॉप एज योर करियर का री राइट रूम, वेर यू कैन रिवाइटलाइज योर करियर, रिपोजिशन योर वैल्यू एंड मूव फॉरवर्ड विद मोर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो आज ही जाइए, रजिस्टर कीजिए एट playitfull.com/nj, दैट्स playitfull.com/nj। तो फिर चाहे layoffs हो, AI हो, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो, या यंगर कलीग्स फास्टर मूव हो रहे हो, आपके करियर का पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आज ही जाइए, रजिस्टर कीजिए एट playitfull.com/nj एंड मार्क द डेट September 27 एट शेरिटन एडिसन न्यू जर्सी। और म्यूजिक का पिक्चर भी अभी बाकी है मेरे दोस्त विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शाम लाइक सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार कितने सारे गाने बनते हैं, कितने सारे एल्बम्स बनते हैं, लेकिन कभी कभार एक ऐसा एल्बम आ जाता है ना जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता है और आज भी उतना ही टाइमलेस है जितना तब जब रिलीज हुआ था तब था। और आज जिस एल्बम की बात हो रही है दैट इज नन अदर देन रॉक स्टार। जी हाँ, क्योंकि इस एल्बम ने एक ऐसा गाना दिया था हमें जो सिर्फ गाना नहीं था, एक रेबेलियन बन गया था। रॉक स्टार का सड्डा हक बना था हर यूथ का एक्सप्रेशन, क्योंकि इम्तियाज अली ने ना तब ए आर रहमान से कहा था कि मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जो जॉर्डन की आग को जला दे, और मोहित चौहान ने इसमें अपनी रॉक वॉइस का मैजिक छोड़ा था, और रणबीर कपूर की जो रॉ एनर्जी थी ना इसने इस गाने को कल्ट बना दिया था। वैसे तो यार ये गाना आज भी जब बजता है तो लगता है कि अंदर से कोई चिल्ला रहा है, मतलब मुझे भी कुछ कहना है, अपने दिल की भड़ास बाहर आ जाती है। तो अगर आपको भी ये गाना पसंद है और आपके भी दिल में इस गाने ने जगह बनाई है तो चलिए आज बजाते हैं सड्डा हक फ्रॉम द वन एंड ओनली एल्बम विच इज स्टिल टाइमलेस, रॉक स्टार बाय ए आर रहमान। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अदर एल्बम दैट यू एब्सोल्यूटली लव विच इज स्टिल टाइमलेस। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो फुल वॉल्यूम कीजिए क्योंकि सड़ा हक बचने ही वाला है राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बात हो रही है एक ऐसे टाइमलेस एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल को छू जाता है। और वो जो टाइमलेस एल्बम है दैट इज नन अदर देन रॉक स्टार बाय ए आर रहमान। और यार उस एल्बम का एक ऐसा गाना है जो सिर्फ एक लॉस्ट सोल के लिए नहीं लेकिन हर उस इंसान के लिए है जो अपने घर को ढूंढ रहा है। इम्तियाज अली ने गाया हुआ नादान परिंदे घर राजा इस गाने को ना फिल्म का इमोशनल एंकर बनाया था। ए आर रहमान साहब ने इसमें सूफी और रॉक का एक ऐसा ब्लेंड दिया था कि ये जो गाना है जॉर्डन के सफर का टर्निंग पॉइंट बन गया था। और मोहित चौहान की आवाज, उफ, एक दर्द जो सीधा दिल में घुस जाता है। तो यार ये गाना सुनते ही ना एक अजीब सा होम सिकनेस महसूस होता है, चाहे घर पास हो या दूर। तो अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है तो चलिए आपके ही लिए आज प्ले कर रही हूँ नादान परिंदे घर आजा। और मुझे जरूर बताना कि रॉकस्टार का ये गाना क्या आपका भी फेवरेट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। लेकिन अगर और भी कोई गाना आपका फेवरेट है फ्रॉम द मूवी रॉकस्टार, जल्दी से मुझे इंस्टा कीजिए। और तब तक के लिए रॉकस्टार का नादान परिंदे घर आजा राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल को छू जाने वाला है। और आज का जो ये एल्बम है यार, ये अभी भी इतने सालों बाद भी टाइमलेस है। बात हो रही है रॉक स्टार एल्बम के बारे में, कंपोज बाय AR रहमान। और इस एल्बम में तो यार वैसे तो सारे गाने अमेजिंग है, लेकिन एक ऐसा गाना भी है जो सिर्फ सुकून ही नहीं देता, रूह तक को छू जाता है। निजामुद्दीन दरगाह में शूट हुआ कुन फाया कुन, ये जो गाना है ना, असली कव्वाल के साथ रिकॉर्ड किया गया था। AR रहमान ने खुद कहा था कि ये जो कंपोजिशन है वो बहुत ही डिवाइन है। और मोहित चौहान, AR रहमान और जावेद अली की ट्रिनिटी ने इस गाने को ना सोल थेरेपी बना दिया था। वैसे तो यार ये जो गाना है चल पड़ता है जब जिंदगी थोड़ी रुक जाए और हर बार दिल को हल्का कर जाता है। तो अगर आज की शाम दिल थोड़ा घबराया हुआ है या बस थोड़ा वक्त अपने लिए चाहिए ना, तो कुन फाया कुन ये जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो सुन लेना, और मुझे जरूर बताना कि ऐसी कौन सी लाइन है इस गाने की जो आपको टच करती है। टेल मी ऑन इंस्टेंट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और रॉक स्टार का आपका फेवरेट गाना है वो कौन सा है वो भी मुझे जरूर बताना। और तब तक के लिए कुन फाया कुन ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो मुकेश जी,
2: कौन?
3: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
2: नहीं हो पाया भाई?
3: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
2: हाँ, नहीं हो पाया
3: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
2: हाँ
3: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
2: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया है, क्या मजाक ही क्या है ये?
3: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई।
3: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे सर, वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर, वो
2: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये हो पाया वो नहीं हो पाया।
3: नहीं सर,
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
3: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
2: क्यों नहीं हो पाया
3: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
2: है?
3: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
3: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
2: क्या करा दूँ
3: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
3: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
2: क्या गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी।
3: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया,
2: उसमें
3: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
2: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
3: अच्छा सर,
2: मुझे चाहिए अपनी वापस।
3: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
2: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
3: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
4: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
2: तो जान निकाल दी हमारी।
4: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
2: कुकड़ू-कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज हमारी बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल में ना एक अलग ही जगह कर देता है और आज भी उतना ही रेलिवेंट है, उतना ही अमेजिंग है। रॉक स्टार एल्बम की बातें हो रही है, कंपोज बाय AR रहमान और आज की जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम अमित द्विवेदी जो कि रहते हैं एडिसन में और उनको फिर से उड़ चला जो कि रॉक स्टार का गाना है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनका कहना है कि ये गाना सिर्फ एक ट्यून नहीं है, एक फ्लाइट है अपने ख्यालों की, अपने आज़ादी की और अपने सपनों की। और मेरा भी यही मानना है क्योंकि इम्तियाज़ अली के रॉक स्टार एल्बम का ये जो ट्रैक है मोहित चौहान की मैजिकल आवाज़ और AR रहमान की एक्सपेरिमेंटल कंपोजिशन का एक बहुत ही रेयर जेम है। मतलब लिरिक्स इरशाद कामिल जी की है और ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी का ना खुला आसमान ही उन्होंने लिख दिया हो। मूवी में ये जब मोमेंट था जब जॉर्डन के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था क्योंकि तब वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर म्यूजिक और सफर की दुनिया में उड़ चले थे और इसमें ना कोई फिक्स्ड बीट नहीं है, एक बहुत ही फ्री फ्लो मेलोडी है गाना, बिल्कुल लाइफ की तरह अनप्रेडिक्टेबल। तो मेरे लिए फिर से उड़ चला एक ऐसा ट्रैक है जो बस कहीं पर भी आप सुन सकते हो, चाहे रोड ट्रिप में हो चाहे ट्रेन में हो, हेडफोन्स लगाते ही वर्ल्ड से ना डिसकनेक्ट कर देता है ये गाना। और अगर आपको भी यही लगता है तो चलिए आपको वर्ल्ड से डिसकनेक्ट करते हैं विद दिस सॉन्ग रिक्वेस्टेड बाय अमित द्विवेदी जी। और दोस्तों आपको भी अगर कोई ऐसा एल्बम पसंद है जिसके सारे गाने आपके दिल के बहुत ही करीब है तो मुझे जरूर बताइए, टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए रॉक स्टार का फिर से उठ चला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

Radio Mirchi, New York. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसके हर एक गाने ने दिल में अलग ही जगह कर दी है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज बात हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना बहुत ही खूबसूरत है और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम दैट एल्बम वो आज मैं प्ले करने वाली हूँ। जी हाँ, बात हो रही है रॉक स्टार एल्बम की कंपोज्ड बाय AR रहमान और ये जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम मोहिनी सांगले हु इज फ्रॉम एडिसन। और मोहिनी कहती है कि यार इस एल्बम का तुम हो जो ये गाना है यार एक ऐसा रोमांटिक गाना है ना जो प्यार भी याद दिलाता है और इसकी खुशबू भी ले आता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जब प्यार की यादें इसे दिल में जगह कर देती है, घर कर देती है ना, तब ये गाना याद आता है। और तुम हो को सुनते ही ना रणबीर और नरगिस की वो साइलेंट केमिस्ट्री याद आ जाती है। इरशाद कामिल के लिरिक्स द अल्ट्रा पर्सनल जैसे किसी डायरी से निकले हो और AR रहमान ने इसमें मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की डुएट फील यूज करके यार ये गाना बहुत लॉन्गिंग और लव के लिए बना दिया। तो चलिए ये गाना चलाते हैं आज स्पेशली मोहिनी जी के लिए जिनकी यार पुरानी यादें इस गाने से ताज़ा हो चुकी है। अगर आपकी भी हुई है तो ज़रूर बताना कि आपको ये गाना कैसा लगता है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर ऐसा भी कोई एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है उस एल्बम के बारे में ज़रूर बताना, उसके हर एक गाने हम यहीं पर प्ले करेंगे। और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शाम दालाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।